मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 1 जून सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है आज की हमारी ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। श्रोताओं, आज खेत खलियान कार्यक्रम में चर्चा का विषय है बरसाती भिंडी की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ मौसम के लिए भिंडी लगाने का समय अभी चल रहा है, इसे बरसाती भिंडी के नाम से भी आप जानते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं वैशाली बधू, पूसा सावनी, हरी चिकनी, पॉर्किंस, लॉन्ग ग्रीन लोकल, सेल वन, पूसा मखमली। बरसाती भिंडी की बुआई किसान भाई जून जुलाई में कर सकते हैं। इस समय बुआई करने से लाभ जो है अच्छा मिलता है। खेत की तैयारी करते समय आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई एक बार कर लें, उसके बाद से 2-3 जुताइयां देसी हल से करें ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डालें। और उस समय एक और बात का ध्यान रखें कि नीम की खल्ली का प्रयोग खेत में जरूर करें या करंज की खल्ली का प्रयोग करें ताकि आपके खेत में भूमिगत कीड़े जो हैं वो नुकसान नहीं कर सके। बरसात के मौसम में जब आप भिंडी की खेती करते हैं तो उसमें 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। जहां तक खाद तथा उर्वरक का सवाल है तो सड़ी हुई गोबर की खाद 30 टन, नेत्रजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में दें। बोने के समय नेत्रजन 60 किलोग्राम और 40 से 45 दिनों बाद 60 किलोग्राम नेत्रजन का व्यवहार करें। स्फुर 70 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में बोने के समय आप खेत में दे दें। इस मौसम में सिंचाई करने की आवश्यकता विशेष नहीं होती है भिंडी की फसल को, लेकिन प्रारंभिक दिनों में आप जब मौसम गर्म रहे और वर्षा नहीं हो उस समय एक या दो सिंचाई जो है आप करें। भिंडी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधे को रोग और कीड़ों से कैसे आप बचाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीला मोजाइक रोग के बारे में, जो कि भिंडी में बहुत होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियों के ऊपर, तनों के ऊपर और कभी कभी संपूर्ण पौधे पर चित्तियाँ पड़ जाती हैं, जो कि पीले रंग की होती है, अनियमित आकार की होती है, ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से घरों में मोजैक किया जाता है, इसीलिए इसका नाम मोजैक रोग है। यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है, इसलिए इस रोग को रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं बनी है। केवल इस रोग को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको यदि आप नियंत्रित कर लें तो ये रोग जो है नहीं होता है। इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर कीड़े प्रसारित करते हैं, यानी कि जो रोगजनक वायरस होते हैं उन्हें कीड़े अपने साथ लाते हैं रोगी पौधे से निरोग पौधे पर। तो उन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ पौधों के ऊपर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव जो है आपको करना होता है। खेत में यदि इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो पहले ही पौधे को उखाड़ कर फेंक दें और बाकी स्वस्थ पौधों पर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव करें ताकि कीड़े नहीं आएँ और आपकी फसल जो है वो बची रहे। बरसात के मौसम में कीड़े के द्वारा ये फल छेदक कीड़ा और तना छेदक कीड़े के द्वारा नुकसान भिंडी की फसल को किया जाता है। इसमें फलों के अंदर छेद पाए जाते हैं, तनों के अंदर भी छेद पाए जाते हैं, फलों के ऊपर काला पदार्थ भी जमा रहता है जो कि कीड़े का बिष्ठा होता है। तो इस तरह से फल की गुणवत्ता खराब होती है और बाजार में इसका मूल्य नहीं मिलता है। इस कीड़े को नियंत्रित करने के लिए आप इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव ऊपर से कर सकते हैं या दानेदार दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दानेदार दवा का जब आप प्रयोग करें तो काफ़ी सावधानी के साथ दवा प्रयोग करने के एक महीने के बाद ही फलों की तुड़ाई करें। और दवा प्रयोग करने के पहले आप फलों की तुड़ाई कर लें क्योंकि ये दवा काफ़ी जहरीली है, जैसे दानेदार दवा फ्यूराडान है या 4-10 G है, तो इसके प्रयोग के पहले काफ़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। खेत में खरपतवार नहीं हो इसकी भी व्यवस्था आप करें और समय समय पर देखभाल करते रहें तो भिंडी की फसल से उत्पादन अच्छा होगा।
0: खेत कल्याण कार्यक्रम में आपने जाना बरसाती भिंडी की खेती के बारे में। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए अब सुने दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.1 MHz पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
2: योग एक आध्यात्मिक शब्द है, परंतु धर्म नहीं, वरन यह जीवन जीने का एक तरीका है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। योग के माध्यम से शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित होता है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, यानी हमारा जुड़ाव अपनी अंतरात्मा से। व्यवहारिक तौर पर कहा जाए तो योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रतिदिन योगाभ्यास मानसिक और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। पहले जहां केवल आयुर्वेदिक रूप से योग को महत्व दिया जाता था, वहीं आज योग वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी सिद्ध हो चुका है। योग का नियमित अभ्यास व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह व्यक्ति के तनाव को नियंत्रण करने में सहायक है। योग द्वारा हम नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। योग मन में एकाग्रता बढ़ाता है। एकाग्रचित मन चिंता, तनाव और अवसाद से दूर रहता है, जो एक सुखद जीवन की नींव है। योग स्वास्थ्य और आत्मचिकित्सा के प्रति हमारे प्राकृतिक प्रवृत्ति पर केंद्रित है। योगासन शरीर में शक्ति, लचीलापन और आत्मविश्वास को विकसित करता है। यह वजन कम करने, बेहतर पाचन तंत्र विकसित करने, रक्त परिसंचरण और मांसपेशियों को प्रभावी बनाने में सहायक है। यह आलस्य को दूर भगाकर व्यक्ति में सक्रियता बढ़ाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्रमसु कौशलम, यानी अपने कर्मों में कुशलता ही योग है। पतंजलि लिखित अष्टांग योग में योग के 8 अंग बताए गए हैं। इनमें यम यानी 5 परिहार, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, गैर लोभ, गैर विषयाशक्ति और गैर स्वामीगत। नियम यानी 5 धार्मिक क्रिया, पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और परमात्मा को आत्मसमर्पण। आसन यानी ध्यान, प्राणायाम, प्राण यानी सांस या आयाम को नियंत्रित करके जीवन शक्ति को नियंत्रित करना। प्रत्याहार यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा यानी एकाग्रता। ध्यान यानी प्रकृति का गहन चिंतन। और 8वां यानी अंतिम है समाधि यानी विमुक्ति, ध्यान में चैतन्य के साथ विलय। इस अष्टांगिक मार्ग को अपना कर
1: चिंतन मनन का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं भक्ति के साथ, भजन के साथ और कई बार चिंतन के साथ। चिंतन, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो रही होती है, हमारे जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया होता है जब हम परेशानी से जूझ रहे होते हैं, तब हमें चिंतन करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और ऐसे चिंतन में हम पाते हैं कि अगर हमारे ऊपर हमारा खुद का विश्वास हो तो किसी भी मोड़ को आसानी से पार किया जा सकता है। और विश्वास आता है भक्ति से, विश्वास आता है साधना से, विश्वास इस बात से भी आता है कि माता रानी है जो सब ठीक कर देगी। ये विश्वास भी हमें मजबूत बनाता है। आइए हम अपने दिन की शुरुआत करें माता रानी को मनाने के साथ।

पहले सेरा वाली माँ को मनाइए, उसके बाद फिर कोई काम आरंभ कीजिए। माँ मान जाती है तो काम आसान हो जाता है। और ये बातें अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि भक्ति कर लेंगे जब वक्त आएगा, भक्ति कर लेंगे जब हमारे जो सामाजिक कार्य हैं, जो सांसारिक कार्य हैं, वो पूरे हो जाएंगे। परंतु हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर जो हमारे प्राण वायु हैं, जिसे कई बार हंस भी कहते हैं कुछ कवि, वो कब उड़ जाएगा, हमारी प्राण कब हमसे अलग हो जाएगी। और शायद वो वक्त नहीं आ पाएगा जब हमने तय कर रखा है कि हम भक्ति करेंगे। हमें कुछ आभास नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा, इसलिए जो क्षण है अभी हमारे पास, उसमें क्यों ना हम ईश्वर की भक्ति कर ले, जो हमारे मन को शक्ति देता है, हमारे मन में विश्वास भरता है। क्योंकि जब उम्र पूरी हो जाएगी, जो उम्र लिखा गया है, तब ये जो हुक्म है, हुजूरी है, ये छूट जाएगी और यम के दूत के साथ इस हंस को जाना ही पड़ेगा।

दो ही दिन का तो दर्शन मिला है और आगे क्या होगा हम नहीं जानते। और दो दिन के इस दर्शन के मेले को क्यों ना इस मेले का हम आनंद ले, हर पल को हम जिए, हर पल को अच्छे से जिए। और उन पलों में से कुछ पल हम ऐसे भी निकालें जब हम भक्ति करें, जब हम आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। क्योंकि जब ये चादर पुरानी हो जाएगी तब हमें आभास भी नहीं होगा कब चादर बदल दी जाएगी। चादर यानी कि हमारा ये शरीर, और इस चादर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा अपना शरीर बदल लेगी और हमें आभास भी नहीं होगा।

हमारी चादर कब पुरानी हो जाएगी हमें इसका अंदाजा नहीं होगा, इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारी इस काया का ये सब माया है, ये हमें समझना चाहिए। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे वंदना, आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। श्रोताओं, अब स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है, भेंट वार्ता का विषय है, बदलते मौसम में सावधानियां। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर गौर मोहन मजुमदार। आइए सुने ये वार्ता।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। मौसम बदल रहा है और ऐसे में हमें जरूरत है कि हम कुछ सावधानियां बरतें, और इसी विषय पर आज हम बातें करेंगे डॉक्टर गौर मोहन मजुमदार से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, जब भी कोई मौसम बदलता है उस समय हमें साधारणतया किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
1: सर, प्रथम तो हमें इस बात को जानना है कि हमारी जलवायु के साथ हमारे शरीर का क्या संबंध बनता है।
0: जी,
1: हम जान रहे हैं इस बात की भारत की जलवायु परिवर्तनशील है।
0: जी,
1: ऋतु परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन से मानव शरीर हमेशा से प्रभावित हो रहा है। इसका मुख्य कारण हमारे शरीर की बनावट है।
0: जी,
1: हमारे देश में मुख्यतः 5 मौसम, प्रत्येक मौसम की अपनी विशेषता होती है एवं प्रत्येक मौसम का हमारे शरीर पर प्रभाव अलग अलग ढंग से पड़ता है।
0: जी,
1: होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान को प्राकृतिक चिकित्सा विधान के रूप में विश्व में मान्यता प्राप्त है। अतः प्रकृति प्रदत्त बीमारियों में होम्योपैथिक चिकित्सा का महत्व बहुत ही ज्यादा है, और यह सर्वविदित है कि होम्योपैथिक चिकित्सा का कोई भी कुप्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ता।
0: तो डॉक्टर साहब, अब हम इस ऋतु की बात करें कि अभी ठंड से हम ग्रीष्म ऋतु की ओर जा रहे हैं और अभी वसंत ऋतु है, तो इस ऋतु में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: बसंत के उल्लास के साथ हमें बसंत ऋतु के शरीर पर पड़ने वाली प्रभाव से भी सतर्क रहना है।
0: जी,
1: चूंकि मौसम में

0: बदलाव से, बसंत के प्रभाव से हमारे शरीर में, या आए दिन हम अभी देख रहे हैं, कुकर खांसी
1: जी,
0: चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, न्यूरोलॉजिक पीड़ा अर्थात नर्व का दर्द, पेट की बीमारियां, सर में चक्कर एवं मिजल्स आदि बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आपने चर्चा की कि कुकुर खांसी, चर्म रोग, फोड़ा फुंसी इत्यादि अनेक रोग हो सकते हैं इस मौसम में।
0: हाँ।
1: तो कुकुर खांसी होने के क्या कारण है और कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं?
0: अभी हम देख रहे हैं कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, एक खांसी हमारे यहाँ भी चली हुई है जो कि इतना खांसी होता है कि मुंह ही बंद नहीं होता है
1: जी।
0: चेहरा लाल हो जाता है, खांसते खांसते लोग कह कर देते हैं
1: जी।
0: ऐसी स्थिति को ही कुकर खांसी कहा जाता है।
1: खांसी नहीं हो इसके लिए सावधानियां क्या क्या बरतनी
0: हाँ,
1: चाहिए?
0: अभी भी हमें थोड़ा सुसुम पानी का सेवन करना है, गले को ढक के रखना है, पंखा का प्रयोग अभी हमें नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: अगर थोड़ी बहुत गर्मी लगती है तो उसे बर्दाश्त करना है, ना कि हम फैन चला के बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, इससे हमारी खांसी भी बढ़ती है। हाँ, अगर फैन वगैरह नहीं चलाते हैं तो खांसी नहीं होगी, इसे ये बचाव तो हमें करनी है
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि अनेक प्रकार के चर्म रोग भी हो सकते हैं, तो उनके होने का क्या कारण है?
0: क्योंकि जब हम गर्म कपड़े को उतारते हैं तो कोल्ड टू हॉट में जाते हैं
1: जी,
0: तो होता है क्या, तो उसका प्रभाव शरीर चर्म पर भी पड़ता है। हर चर्म रोग जैसे पित्ती हुआ या खुजलाहट स्किन पे होने लगती है, रैशेस आने लगता है, तो इन सारी चीजों को हम देख रहे हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि नसों में दर्द भी हो सकता है, तो इसका क्या कारण है?
0: हाँ, तो ऐसे में देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजिक पेन भी जो है इस मौसम में बढ़ जाता है
1: जी।
0: कोई दांत में दर्द बतलाता है, कोई किसी नर्व में सर्वाइकल न्यूरोलॉजिक पेन भी बतला देता है, तो ऐसे रोगों के लिए भी जो है होम्योपैथिक में सटीक दवाइयों का प्रावधान है
1: जी। डॉक्टर साहब, पेट की बीमारियां भी हो सकती है इस मौसम में,
0: बिल्कुल हो रही
1: जैसा
0: है,
1: कि
0: पेट
1: आपने
0: खराब हो
1: कहा
0: रही
1: भी,
0: है।
1: तो इससे कैसे बचना चाहिए?
0: देखिए, अभी क्या है, जनरली हम देख रहे हैं कि पेट में क्या खराबी, पेट खराब हो रहा है लोगों को, पतला दस्त आ रहा है, तो इसके लिए दो दवाई ब्राइनिया 6
1: जी
0: और आयरिस वर्स
1: जी जी
0: 6 अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो पेट में हमारा ठीक हो जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम ये आपसे जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि इस बदलते मौसम में हमें खास करके किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें।
0: हम तो देख रहे हैं कि दिन में गर्मी, रात को ठंड का एहसास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम
1: जी
0: अपने शरीर को गले से ऊपर के भाप को अगर ढककर रखते हैं
1: जी
0: और गर्म कपड़ा का एकाएक नहीं उतारते हैं, धीरे
1: जी
0: धीरे उसे उतारते हैं
1: जी
0: अंदर में एक कूलन कुछ भी पहन कर रखते हैं तो हमारा बचाव होता है। खान पान में अभी हम आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने को थोड़ा सा निषेध रखते हैं तो हमारा इससे सावधानी हम इससे बढ़ सकते हैं
1: जी जी जी निश्चित रूप से। तो डॉक्टर साहब, आप
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना बदलते मौसम में सावधानियों के बारे में। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर गौर मोहन मजुमदार, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में।

भरत को श्री राम की चरण पादुका प्राप्त हो चुकी है। सबके चित्रकूट से विदा होने की वेला आ पहुंची है। स्वामी के चरणों की वंदना करके भरत और शत्रुघ्न ने लक्ष्मण को गले लगाया, सीता जी के चरणों की धूलि ली। लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजा जनक के सम्मुख सिर नवाकर उनके वहां आने के लिए कृतज्ञता

तथा वन प्रवास के कष्टों के लिए क्षमा याचना की। फिर दोनों भाइयों ने सासू रानी सुनैना के पास जाकर उनका आशीष प्राप्त किया। मुनि विश्वामित्र सहित सभी पूजनीय ऋषि मुनियों, कुटुंबियों, अयोध्या वासियों, मंत्रियों आदि को यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा करने के बाद श्री राम माता कैकेयी के निकट आए। निश्चल हृदय से मिल भेंट कर माता कैकेयी का संकोच मिटाया और सुंदर सजी पालकी में बिठाकर उन्हें विदा दी। उधर सीता जी ने मायके से आए कुटुंबियों, माता पिता और सासुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी माताओं को सुंदर सजी पालकियों में बिठाकर विदा किया गया। जब सब लोग विदा होकर चले तो लगा बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु तथा सभी कुटुंबी मन मारे थके हारे चले जा रहे हैं। पर्णकुटी लौटकर श्री राम और लक्ष्मण का मन अवसाद से भर गया। जड़ चेतन, चर अचर सभी उदास हो गए।

रामचरितमानस गान आपने सुना श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम से पहले आइए जान लें आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूप से।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे आप सुन पाएंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। रोजाना की तरह इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जानेंगे मौसम का हाल, रेल सूचना, आज का इतिहास, समाचार पत्रों की सुर्खियां, साथ ही आनंद लेंगे सुगम संगीत और फिल्मी गीतों का, और होगा अंग्रेजी वार्ता चेंजिंग एनवायरमेंट एंड डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। श्रोताओं, आज फिल्मी गीत प्रसारित होंगे प्रातः 9:06 पर, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 5:30 पर, रात 8 बजे, रात 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी होगा। सुगम संगीत प्रस्तुत होगा प्रातः 9:30 पर, कलाकार होंगे शंकर मिश्र नाहर, रात 7:52 पर कलाकार चंद्रशेखर। आज आनंद लीजिए लोकगीतों का प्रातः 10:30 पर, कलाकार कपिल देव ठाकुर होंगे। दोपहर 1 बजे कलाकार चमालाल मंडल के स्वर में लोकगीत होगा। शाम 7:10 पर कलाकार संजीत कुमार सिंह। बहनें अपना कार्यक्रम नारी लोक सुनती हैं दोपहर के 12 बजे, 12:30 पर एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा। घरांगन कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर के 1:30 पर, प्रस्तुत होगा बंगला गान कार्यक्रम दोपहर 3 बजे। 3:20 पर होता है समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से शाम 5 बजे तक आनंद लीजिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। श्रोताओं, हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे युवाओं को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम शाम के 6 बजे होगा। सुनना ना भूलें साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी रात 8:15 पर। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में राग मारू विहाग, कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां एवं साथी। हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने ही वाले हैं। आइए सुने दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा। आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारा गपशप और बहुत सारा मनोरंजन। इसके साथ ही बहुत सारी जानकारियां भी आप तक पहुंचने वाली है। बस आप हमारे साथ बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटे से पर बेहद ही ज़रूरी जानकारी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा है आपने। मैं आपको बताने वाली हूँ वक्त का हाल। अगर मैं आपको वक्त का हाल बता दूं तो 7:03 हो चुके हैं और आज दिन है सोमवार का, तारीख है 1 जून 2026 और दिन के 7 बज चुके हैं। अभी तक आपने अपने दिन की शुरुआत तो कर ही ली होगी, क्योंकि आजकल तो मतलब 4:30 ही आप देखेंगे कि दिन बिल्कुल रोशनी हो जाती है। तो ऐसे में तो 7 तक शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अपने दिन की शुरुआत नहीं की होगी। हाँ, वो बच्चे जो रात को काफ़ी देर तक पढ़ाई करते हैं वो कभी कभी देर से जागते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह जाकर पढ़ाई करते हैं 4 से, या कई बच्चे तो बिल्कुल बहुत सवेरे जाग जाते हैं, और कुछ बच्चे रात को देर तक जागते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं। सबकी अपनी अपनी सुविधा अनुसार सब अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं। और जब भी आप पढ़ें बस दिल लगा कर पढ़ें और ईमानदारी से पढ़ें। और साथ ही कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अपने ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए। कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं पर विश्वास नहीं होता है कि आगे क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो विश्वास रखें खुद पर, आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बस मेहनत करना है और ईमानदार रहना है, और साथ ही थोड़ी सी श्रद्धा रखनी है। अगर आप रखते हैं ईश्वर के ऊपर तो थोड़ी सी श्रद्धा, और कहते हैं कि माँ सरस्वती जो होती है ना, वो हमारी वंदना ज़रूर सुनती है, और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी होते हैं उनकी वंदना ज़रूर सुनती है। तो बस वंदना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, और साथ ही पढ़ाई लिखाई तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं तो कोई वंदना, कोई आराधना, कोई भक्ति काम नहीं आती है। सबसे ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई। और कुछ 1 भी टाइम मिले तो एक बार याद कर लीजिए ईश्वर को और कहिए कि जो भी हो अच्छा हो, बस आपके ऊपर इतना भरोसा है। और इसी वंदना के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि आइए हम सब एक साथ मिलकर वंदना करते हैं, एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर वंदना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो किसी का भी बुरा ना करे और हमें कभी बुरा, ऐसे गलत रास्तों पर हमें कभी ना चलने दे, हमें हमारा हमेशा मार्गदर्शन करे। इन्हीं कुछ बातों के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं ध्रुव कुमार, और अभी जो आप वंदना सुनने वाले हैं, गीत सुनने वाले हैं, वो लिखा हुआ है सोहम लाल द्विवेदी का।

एक वंदना ये भी कि मौसम जो परिवर्तन हो रहा है मौसम में, वो मौसम में परिवर्तन थोड़ा धीरे हो और इस हिसाब से तो हो कि हम उसे बर्दाश्त कर पाए। अभी जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है वो शायद बर्दाश्त के थोड़ा थोड़ा बाहर होता जा रहा है। वैसे उस पे गलती कहीं ना कहीं हमारी है और हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं वो उनकी है और अभी जो पीढ़ी है उनकी भी है। और आने वाली पीढ़ी ऐसा ना कहे कि जो ये पीढ़ी अभी हमारी वर्तमान पीढ़ी चल रही है, इन्हें कोसे कि अगर हमने कुछ सही कदम उठा लिए होते तो हमारे मौसम को, हमारे इस जलवायु को बचाया जा सकता था। इसलिए कुछ ऐसे अपने हिसाब से जो आपके वश में हो, कुछ ऐसे काम ज़रूर कीजिए जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी धरती के लिए लाभदायक हो। फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान के अनुमान के अनुसार, पूर्वानुमान के अनुसार अगर बात करें तो एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ रफ्तार से हवा चल सकती है और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है, संभावना है ऐसी। और अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। और अगर हम बात करें हवा की, तो आम तौर पर जो हवा चलेगी अगर आंधी नहीं आएगी तो उस दौरान जो हवा चलेगी 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अभी अगर हम बात करें तो अभी 27 डिग्री सेल्सियस है और हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल घिरे और थोड़ी बहुत वर्षा भी हो। बादल घिर घिर आएंगे और रिमझिम रिमझिम बरस जाएंगे। तो अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो अपने पास पानी की बोतल तो ज़रूर रखें क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है, और साथ ही एक छाता भी ज़रूर रखें क्योंकि बारिश भी हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें तभी बाहर निकले, वरना परेशानी हो सकती है क्योंकि बादल घिर घिर आए हैं और अभी धूप तो निकल ही आया है। बिल्कुल चमकता सा दमकता सा धूप और बारिश की संभावना है। और आइए अभी हम सुगम संगीत का आनंद लेते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर
2: 870-001-4242।
3: एक प्यारे से सुगम संगीत और एक छोटे से अंतराल के इस पार हम हैं आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अब हम जानते हैं थोड़ा ट्रेनों के हाल के बारे में, कौन सी ट्रेन लेट लतीफ़ है और कौन सी ट्रेन बिल्कुल सही समय से चल रही है। आप कहीं जाने वाले हैं या आपका कोई अपना आपके पास आने वाला है तो इस समय को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ट्रेन संख्या 15553 यानी कि भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस सुबह 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस बिल्कुल अपने सही समय से चल रही है, ये 8:15 पर भागलपुर पहुँच जाएगी। ट्रेन संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल अपने तय समय से 3:47 की देरी से चलते हुए 11:52 पर भागलपुर आएगी।

53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर 8:37 पर भागलपुर आएगी। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस अप

0: अपने निर्धारित समय 10:15 पर भागलपुर आएगी। 1, 2, 3, 6, 7 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय समय 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। तो ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज, कौन सी ट्रेन लेट लतीफ है, कौन सी ट्रेन बिल्कुल सही समय से है, ये आपको मैंने बता दिया अभी। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक लेते हैं छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार वापस हम यही मिलेंगे, आप भी कहीं मत जाइएगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: श्रोताओ, अपने वादे के अनुसार एक छोटे से अंतराल के इस बार मैं हूँ आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में अब हम आगे बढ़ेंगे और आज है सोमवार और सोमवार को हम सुनते हैं एक इंग्लिश टॉक। और आज इंग्लिश टॉक का यानी कि अंग्रेजी वार्ता का विषय है चेंजिंग एनवायरमेंट एंड डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और वार्ताकार हैं श्रीमती श्यामा सिन्हा। आइए सुने ये इंग्लिश वार्ता।
4: And depleting natural resources. Changing environment and depleting natural resources. Changing environment refers to the change or disturbances of the environment caused by human influence or natural ecological processes. Environmental change includes all things as natural disasters, human interference, or animal interaction. Environment change does not only encompass physical changes, but things like as infestation of invasive species is also environmental change. Resource depletion is the consumption of a resource faster than it can be replenished. Natural resources of both types, the renewable and the non-renewable, when used beyond their rates of replacement, is considered to be resource depletion. Resource depletion is most commonly used in reference to farming, fishing, mining, water usage, deforestation, consumption of fossil fuels, agricultural and industrial activities. Depletion in natural resource and population growth go hand in hand. Increased population pushes up human demand. This pressure in turn vents out poisonous industrial smoke, discharge of pollutants in water resources and air. Pollutants as CFCs, chlorofluorocarbons, form layers in atmosphere, get absorbed in air to create openings in ozone layer, which emits high level of ultraviolet radiation. This in turn increases evaporation and vapor transpiration to raise temperature. Result is depletion of groundwater reserve, increase in salinity,

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक छोटे से अंतराल के इस पर हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ वक्त का हाल। वक्त हो चुका है 7:34 और आज दिन है सोमवार का, तारीख है 1 जून 2026। आइए इसी तारीख में आज के दिन क्या कुछ घटित हुआ था जानते हैं, 1 जून को क्या कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ था इस बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले बात इस बारे में कि आज के दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ था, उसमें से सबसे पहले 1992 में भारत और इजराइल के बीच हवाई समझौता हुआ था 1 जून को ही। 1999 में मध्य चीन के ह्यूबी प्रांत में 770-256 ईसा पूर्व के 300 प्राचीन कब्रों की खोज की गई थी। हवाई विश्वविद्यालय जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, इस विश्वविद्यालय में नर चूहे का प्रतिरूप विकसित किया गया था। सन 2004 में इराकी प्रशासनिक परिषद के प्रमुख सुन्नी नेता गाजी मशाल अजीज अल यावर इराक के नए राष्ट्रपति बने थे। सन 2005 में अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की थी। साल 2006 में चीन के दक्षिण पूर्वी जियांगशी प्रांत के शांगीपन गांव में आदि मानव का पद चिन्ह मिला था। ईरान ने परमाणु शोध कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ किसी प्रकार के समझौते से पूरी तरह इनकार करते हुए कहा कि वह वार्ता को तैयार है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना उसे मंजूर नहीं। ब्रिटेन के शिक्षाविदों ने इजरायली विश्वविद्यालय के बहिष्कार का निर्णय आज ही के दिन साल 2006 में लिया था। साल 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बराक ओबामा ने शिकागो के ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च की सदस्यता से इस्तीफा दिया था साल 2008 में। साल 2010 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए बालकृष्णन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे मानवाधिकार आयोग के पहले दलित अध्यक्ष हैं। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन निधन हो गया था। 1969 में विलियम मेलकम हेली का निधन हो गया था। विलियम मेलकम हेली पंजाब उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। 1996 में नीलम संजीव रेड्डी का निधन हुआ। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति। बाल राम नंदा का निधन साल 2010 में हुआ था। बाल राम नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के संस्थापक निदेशक और महात्मा गांधी पर कई किताबें लिख चुके इतिहासकार थे। 1987 में ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन हुआ। ख्वाजा अहमद अब्बास प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक थे। वाजिद खान का निधन सन 2020 में हुआ था। वाजिद खान प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से एक थे। अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन जन्म हुआ था, जो आज के दिन अपना जन्मदिन मना रहे होंगे। बात करते हैं अशोक कुमार की। आज ही के दिन अशोक कुमार का जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं अशोक कुमार। 1958 में इनका जन्म हुआ था। 1945 में चीमन सिंह यादव का जन्म हुआ था। चीमन सिंह यादव महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय नौसेना के नाविक थे। 1939 में एस राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ। भारत के 34वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं एस राजेंद्र बाबू। 1929 में नरगिस दत्त का जन्म हुआ था। और नरगिस दत्त के बारे में हम बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं और भी कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में। 1975 में जन्म हुआ था कर्णम मल्लेश्वरी का, भारत की प्रसिद्ध

भारोत्तोलक और 1938 में जन्म हुआ था बलदेव वंशी का। बलदेव वंशी समकालीन कवि और लेखक थे। राजेश्वरी गायकवाड़ भारतीय महिला क्रिकेटर 1951 में इनका जन्म हुआ था 1991 में इनका जन्म हुआ था। 1927 में जन्म हुआ था एस मुखर्जी का, जो कि भारत के भूतपूर्व 20वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो बात हुई आज के इतिहास के बारे में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम नरगिस दत्त के बारे में भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और बात करें इनकी कुछ फिल्मों की, तो वो फिल्में हैं श्री 420 और मदर इंडिया को कोई कैसे भूल सकता है। और यही कुछ फिल्में थी जिनसे उन्हें उनकी जो पहचान है, जिन्हें आज उन फिल्मों से ही आज भी हम उन्हें जानते हैं, आवारा, अदालत, रात और दिन, चोरी चोरी, लाजवंती, अंगारे, धून, पापी, परदेसी, जागते रहो, बरसात। और अगर हम नरगिस दत्त की बात करें तो नरगिस दत्त का जन्म आज ही के दिन हुआ था और 1 जून को इनका जन्म हुआ था। और इनका अगर हम बात करें तो जन्म के वक्त इनका नाम फातिमा रशीद रखा गया था, लेकिन बाद में इनका नाम बदल दिया गया। इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था, और ये किन्हें नहीं पता है कि वो भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी फिल्म अभिनेता सुनील दत्त से शादी की। और अगर हम इनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत की बात करें तो इन्होंने बचपन में ही अपने इस फिल्मी सफ़र की शुरुआत कर ली थी। उनकी एक फिल्म आई थी तलाशे हक, और बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की थी तमन्ना फिल्म से, जब इन्होंने लगातार एक्टिंग करना शुरू किया तो। और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, पद्मश्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 1958 में मदर इंडिया के लिए, और साथ ही 1968 में रात और दिन के लिए भी इन्हें अवार्ड मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। 1958 में मदर इंडिया के लिए इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते थे। और अगर हम इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 1981 में हो गया था अग्नाशय कैंसर की वजह से। और इनके निधन के कुछ वर्ष बाद ही इनके पुत्र संजय दत्त ने भारतीय सिनेमा में कदम रखा था। और अगर हम बात करें तो इनके निधन के 3 दिन बाद ही संजय दत्त की पहली फिल्म रोकी रिलीज हुई थी। और नरगिस दत्त की हम कुछ और फिल्मों की बात करें तो आवारा, दीदार, जान पहचान, प्यार, खेल, आधी रात, अंदाज, लाहौर, आग, हुमायूं जैसी कुछ फिल्मों में इन्होंने काम किया। और कहा जाता है कि अपने वक्त की ये बहुत ही मशहूर अदाकारा थी, और अपने सादगी से और अपने अदाकारी से इन्होंने बहुतों का दिल जीता था। जब इन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, तब इन्हें बेबी नरगिस के नाम से भी जाना जाता था। और ये पॉलिटिक्स में भी रहीं, और इसके बाद इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, तकदीर जैसी फिल्मों में काम किया, इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। तो ये कुछ बातें हुई नरगिस दत्त के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनकी कुछ फिल्मों में से एक है श्री 420, तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं और गीत के उस पार मिलते हैं।

0: Bum?
1: Hum.
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: Akashvani at 90.
1: एक बहुत ही प्यारे से गीत और एक छोटे से अंतराल के इस पार हम हैं आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा। आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से। और इतिहास की बातें हमने कर ली, इतिहास के बाद आइए अब हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है। वर्तमान के बारे में जानते हैं, वर्तमान में क्या कुछ घटित हुआ है इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली खबर है आईपीएल से जुड़ी हुई, क्रिकेट से जुड़ी हुई, और खबर ये है कि आईपीएल 19वें सीज़न में आरसीबी फिर चैंपियन। तब 18 साल लगे, अब केवल 12 महीने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने वाली तीसरी टीम बन गई है और पहली टीम ऐसी है जो लगातार 2 साल किसी न्यूट्रल मैदान पर आईपीएल खिताब जीत पाने में कामयाब रही। मैच के हीरो विराट प्लेयर ऑफ द मैच किफायती रसीख ने 3 विकेट गिराए। रजत की चमक और वे विराट रजत की कप्तानी में बेंगलुरु लगातार दूसरी बार चैंपियन। गुजरात टाइटंस घरेलू मैदान पर 5 विकेट से हारा। बेंगलुरु ने सीजन में 4 मैच में तीसरी बार मात दी। इसी के साथ बना आईपीएल 19वें सीजन का आरसीबी चैंपियन। अगली खबर है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दौरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा बेली ब्रिज का निरीक्षण किया और साथ ही बैठक भी की। कहा 30 नवंबर तक विक्रमशिला सेतु पर पहले जैसे चलने लगेंगे वाहन, लेकिन 7 जून से पहले बेली ब्रिज चालू होगा। मन की बात में गुंजा बिहार का गौरव। पीएम ने बताया गर्मी से बचने के देसी नुस्खे। पीएम ने कहा बिहार के सत्तू और जरदालू आम का मुकाबला नहीं, ये पेट भरेगा ताकत भी देगा। आम लीची व केला उत्पादकों को मुआवजे की उम्मीद। आंधी बारिश से बागवानी फसलें तबाह, क्षति का आकलन शुरू होगा। बनेगी रिपोर्ट, लीची उत्पादन में बिहपुर खरीक 10 साल पीछे लौटा। सीबीएसई में स्कैन कॉपी में कहीं डुप्लीकेट पेज तो कहीं पन्ने गायब। खजाने में सेंध लगाने वाले ठेकेदार पर शिकंजा कसा। टेंडर किंग रिशु श्री व उससे जुड़ी 8 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कराएगी जांच एजेंसी। जनरल सुब्रमणि ने देश के नए सीडीएस का पद संभाला। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगली खबर है जेब पर बोझ। 8 जून से प्राइवेट बसों में भी नई दरें लागू होंगी। निगम ने डिपो को भेजा रेट कार्ड। निगम की बसों में आज से 10-15% किराया बढ़ाया। दिल्ली जोन का दबदबा, टॉप 3 स्टूडेंट इसी से। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी। शुभम कुमार नेशनल टॉपर बने। आंधी के छह दिन बाद भी सड़कों पर पड़े हैं टूटे पेड़, बड़ी समस्या। बिजली प्रभावित जिलाधिकारी ने 2 दिन में सफाई कराने को कहा। खेतों में जुताई व फसलों में रोग की पहचान के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाया स्मार्ट रोबोट। 25,000 से 30,000 की लागत में तैयार मॉडल। जुताई बुआई सिंचाई और छिड़काव की मिलेगी सुविधा। श्रावणी मेला की बात करें तो सीएम ने तय किया ब्लूप्रिंट। सुल्तानगंज में ट्रैफिक व्यवस्था पर हुई गहन चर्चा। सुल्तानगंज स्टेशन से गंगा घाट तक नया रास्ता बनेगा। कांवरिया पथ पर साल भर बालू रहेगा। तैयारी, 60 कलाकार जुटे। 6 समूहों ने संभाली रेखांकन की जिम्मेदारी। मंजूषा कार्यशाला की तैयारी तेज। बनेगी विशेष स्क्रॉल पेंटिंग। पीरपैंती में उद्घाटन से पहले ही लाखों रुपए से बना शिक्षक प्रशिक्षण भवन जर्जर हो गया। वर्ष 2016 से 2018 के बीच 2 मंजिला भवन बना था, लेकिन अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ था। भवन निर्माण की ना फाइलें मिल रही, ना ही कोई जिम्मेदारी ले रहा। सुल्तानगंज में एनओसी मिलने के 2 माह बाद भी फंड के अभाव में रिवर फ्रंट का काम अटका। विधायक ने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर राशि आवंटित करने की मांग की। सरकारी गोदामों में जगह नहीं, 30% चावल मिलों ट्रकों पर जमा रसीद काटने से कतरा रहे अधिकारी। पैक्सों पर संकट, एसएफसी के पास 2800 करोड़ फंसे। 15 दिन बाद डिफॉल्टर का खतरा। गोदाम फुल, रसीद के बिना अटकी डिलीवरी। भंसार ठप, सीमावर्ती

0: नंबर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल

0: हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
5: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट नांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ऊ मिंट आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हफ्ते के रोज़ बिहार के शहर गया पहुँचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वक्त भी है, जिसमें बहुत से काबीना वज़रा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ऊ मिंट का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ऊ मिंट के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज़ डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट CV शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के BJD मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़िराअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। 1 महीना तवील ये मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़िराअत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़िराअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़िराअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसीह करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफ बरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वज़राए डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौक़ों की मुश्तरका पैदावार समेत सनअती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खत्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौक़ों को उजागर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदाम पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहलकदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और आश्रित बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से,
1: कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: मशहूर मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
2: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज़ लता मंगेशकर की आवाज़ से काफ़ी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज़ में दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलुकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफ़ी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजह किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमनिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनेल हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह। इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाये किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक ज़ेर-आब ड्रोन तैयार करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फ़रोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।
5: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी। 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि डॉ. कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। इधर आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
1: उम्मीदवार को लेकर जो है कृष्ण लिखित में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कृषि बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी।
0: इधर पूरे प्रदेश में भी आज से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो रही है। इस दौरान किसानों को कम खाद और हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत पटना स्थित कृषि भवन से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भागलपुर समाहरणालय के सभागार में श्रावणी मेले की तैयारी और अन्य योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
3: अभी टेम्पररी चालू हो और दूसरा जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में उस तरफ से उस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार के।
0: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने आम लोगों को राहत देते हुए 30 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतें निर्धारित कर दी हैं। इन दवाओं में विटामिन D3, कैल्शियम, मधुमेह और हृदय रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली महत्वपूर्ण दवाएं भी शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित कीमतों में वस्तु और सेवा कर यानी GST शामिल नहीं है। NPPA ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की कीमत में GST तभी जोड़ा जा सकता है जब संबंधित कर का भुगतान सरकार को किया जा चुका हो या उसका भुगतान देय हो। सरकार का कहना है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मरीजों को उचित दर पर दवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति की निकटता वाले 275 पुलिस कर्मियों को का ऐच्छिक तबादला किया है। इन पुलिस कर्मियों में 5 इंस्पेक्टर, 176 एसआई, 42 एएसआई, 54 हवलदार और 6 सिपाही शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के अनुसार सेवानिवृत्ति में 2 साल से कम अवधि वाले कर्मियों को गृह जिला और ऐच्छिक स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर विचार किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बक्सर में महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने की अपील की। इस अवसर पर विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक आनंद मिश्रा, संतोष निराला और राहुल सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले सहित उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।
5: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वो अपनी सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर दिया गया है। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम गया जी के नारदगंज ब्रह्मणी घाट के निवासी हैं। उन्होंने JEE मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। इस परीक्षा में 56,880 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर IIT दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर हैं। वहीं जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। औरंगाबाद जिला परिषद की सदस्य नीतू सिंह को 3 जून को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें अपने क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगामी 5 जून को पटना चिड़ियाघर द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार बच्चे अपने घर से ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को पर्यावरण विषय पर चित्र या पोस्टर बनाकर ऑनलाइन पोर्टल patnazoodigital@gmail.com पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि तक

चित्र और पोस्टर ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। पटना चिड़ियाघर ने अधिक से अधिक बच्चों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की है ताकि

मामले की जांच कर रही है। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी दीदारगंज घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत के सेदुला जवाब इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से बिहार के 2 अभियंताओं की मौत हो गई। इनमें एक अभियंता नवादा के और दूसरा मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के पीयूष राज ने रिले रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले एथलीट बने हैं। भारतीय पुरुष टीम में पीयूष राज के साथ सैयद कबीर, रंजीत कुमार एस, मोहम्मद अशफाक मौजूद थे। इन्हें सभी ने 4x400 मीटर रिले टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर-13 शतरंज प्रतियोगिता में सारण की मोहिनी पंडित और पटना के देवांश केसरी चैंपियन हुए। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए, जिसके जवाब में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने 18 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त किया। इधर राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चयन किया गया। उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जरदालू आम और सत्तू की प्रशंसा की। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आज भेजा जाएगा जरदालू आम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, CBSE ने स्वीकारी ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार की पहली एरो सिटी होगा हरिहरनाथपुर, 11 टाउनशिप में 5 लाख को रोजगार मिलेगा। प्रभात खबर ने टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार ठेकेदार विश्वश्री से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बढ़े बिलों से फिक्स होता था 10% कमीशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी, 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आनंद लें फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अरिजीत सिंह, रेखा भारद्वाज और शफाकत अमानत अली की मिलीजुली आवाजों में बर्फी फिल्म का ये गीत। संगीतकार हैं प्रीतम, गीत लिखा है सईद कादरी ने।

AIR at 90. फिल्म संगीत कार्यक्रम नगमे नए पुराने के अगले गाने के लिए आइए सुने अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा को। फिल्म है टू स्टेट्स और संगीत तैयार किया है शंकर एहसान लॉय ने, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी के भागलपुर के केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा के आवाजों में गीत। आइए अब सुने श्रेया घोषाल को फिल्म एजेंट विनोद के इस गीत के लिए। संगीत तैयार किया है प्रीतम ने, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शंकर मिश्र नाहर। आइए इनकी आवाज में सर्वप्रथम सुने ये भजन। इस भजन को लिखा है रस खान ने।

श्रोताओं ये गजल आप सुन रहे थे मोहम्मद दीन तासीर का लिखा। कलाकार थे शंकर मिश्र नाहर। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातःकाल के 10 बज चुके हैं, आइए अब आनंद ले हिंदी फिल्मों के, पुरानी फिल्मों के गीतों का, फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। कार्यक्रम का पहला गाना आइए सुने किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, फिल्म है नागिन। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, माफ कीजिएगा, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे नागिन फिल्म से। अगला गाना प्यासा फिल्म से। आवाजें दी है गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन देव वर्मन ने।

अगले गीत के लिए आइए सुने मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को। बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने, फिल्म है सूरज।

आइए अब सुने गीतकार शैलेंद्र का लिखा गाना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म है बंदिनी, संगीतबद्ध किया है सचिन देव वर्मन ने।

अब अप्रैल फुल फिल्म के इस गीत को सुनिए। आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने, नगमे निगार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

अगला गाना संगीतकार सोनिक ओमी का, आवाजें दी है सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश ने। फिल्म है दिल ने फिर याद किया और गीत लिखा है जीएल रावल ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से में आज इतना ही। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कपिल देव ठाकुर। आरंभ में आइए इनकी आवाज में सुने ये लोक भजन।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कपिल देव ठाकुर के स्वर में आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुने कजरी।

श्रोताओं, लोकगीत में कलाकार थे कपिल देव ठाकुर। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं और वक्त है कार्यक्रम नई फिल्मों से के तहत नई फिल्मों के संगीत को सुनने का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बॉर्डर टू के इस गीत से, जिसे गाया है सोनू निगम और पलक मुछाल ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने। धुन बनाई है अनु मलिक और मिथुन ने।

श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म नाम का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ये गीत, जिसे गाया है पलक मुछाल और कमाल खान ने। गीत के बोल लिखे हैं शबीर अहमद ने, धुन बनाई है हिमेश शेषमिया ने।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

आकाशवाणी का यही भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत, शीर्षक है गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनू का नमस्कार। दोस्तों, आज गुलदस्ता का ये मंच कुछ नम सा है, कुछ खामोश सा है। आज हम याद कर रहे हैं उस मधुर, सादगी भरी और रूह छू जाने वाली आवाज को जिन्होंने दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी, जिन्हें काल के क्रूर हाथों ने कल यानी 31 मई 2026 को हमसे छीन लिया। सुमन जी केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की वो सुरीली पहचान थी, जिनकी आवाज में मासूमियत भी थी, दर्द भी था और प्रेम की गहराई भी थी। 1950 के दशक से शुरू हुआ उनका संगीत का सफर कई दशकों तक चलता रहा। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली और अनेक भाषाओं में हजारों गीत गाकर संगीत की दुनिया को समृद्ध किया। जब भी न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने की मधुर तान कानों में पड़ती है, दिल किसी खूबसूरत ख्वाब में खोसा जाता है। तुमने पुकारा और हम चले आए, इस गीत में समर्पण की भावना है। तो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में प्रेम की चंचल मुस्कान, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, सुनते ही बरसों पुरानी यादें फिर से ताजा हो उठती हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनके सुर हमेशा बोलते रहे, यही कारण है कि समय बदलता रहा, संगीत के रंग बदलते रहे, लेकिन सुमन जी के गीतों की महक कभी कम नहीं हुई। श्रोताओं, कलाकार इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी कला अमर हो जाती है। सुमन कल्याणपुर जी भी आज भले हमारे बीच न हो, लेकिन उनके गाए हुए गीत हमेशा हमारी यादों, हमारे कार्यक्रम और हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। आइए, आज इस गुलदस्ता कार्यक्रम में हम उन्हें अपने भाव

श्रोताओं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हर बीतते दौर के साथ और भी अधिक मधुर, सुकून भरी और आत्मीय लगने लगती हैं। ऐसी ही एक जादुई आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की, जिनके सुरों में नज़ाकत भी थी, मासूमियत भी और दिल को छू जाने वाली एक अनोखी मिठास भी। सुमन जी ने अपने गायन से अनगिनत गीतों को अमर बनाया। उनकी आवाज़ में एक ऐसी सादगी थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। जब भी उनके गाए गीत सुनाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी खूबसूरत याद धीरे धीरे दस्तक दे रही हो। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, ये गीत उन अनकहे एहसासों की कहानी कहता है दोस्तों, जहां दो दिल एक दूसरे से पूरी तरह परिचित तो नहीं होते, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा रिश्ता, एक अनदेखा सा आकर्षण उन्हें जोड़ देता है। गीत के बोल जैसे दिल की खामोश धड़कनों को आवाज देते हैं और सुमन कल्याणपुर जी की कोमल मधुर गायकी इसे और भी रूहानी बना देती है।

श्रोताओं, संगीत के सफर को तय करते हुए सुमन कल्याणपुर जी ने अनेकों अवार्ड हासिल किए। भारत सरकार द्वारा 2023 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे होते हैं दोस्तों, जो केवल सुने नहीं जाते बल्कि पीढ़ियों तक गुनगुनाए जाते हैं। और जब बात हो सुमन कल्याणपुर जी की, तो उनकी सुरीली आवाज का जादू हर गीत को एक अलग ही पहचान दे जाता है। सुमन जी की गायकी में एक अद्भुत मिठास, सहजता और अपनापन था। उन्होंने अपने स्वरों से न जाने कितने ही गीतों को अमर बना दिया। उनकी आवाज में वो कशिश थी जो बरसों बाद भी श्रोताओं के दिलों को उसी तरह छूती है जैसे पहली बार सुना हो। तो वही सुनते हैं उनका एक ऐसा गीत जिसने अपने चुलबुले अंदाज, मोहब्बत भरे बोल और दिलकश धुन के कारण हर दौर में लोकप्रियता हासिल की। यह गीत मानो उस खूबसूरत एहसास का जश्न है जब किसी की मोहब्बत इतनी खास हो जाए कि उसके चर्चे हर महफिल, हर गली और हर

जुबान पर होने लगे। तो आइए सुमन कल्याणपुर जी की मधुर यादों को प्रणाम करते हुए हम सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी का ये सदाबहार नगमा।

श्रोताओ, आज हम अपने कार्यक्रम गुलदस्ता में याद कर रहे हैं सुरों की उस अनुपम साधिका सुमन कल्याणपुर जी को, जिनकी मीठी और रेशमी आवाज ने हिंदी फिल्म संगीत को अनगिनत यादगार गीत दिए। उनकी गायकी में एक ऐसी मासूमियत और सादगी थी जो सीधे दिल को छू लेती थी। सुमन जी ने हर भाव को इतनी खूबसूरती से स्वर दिया कि उनके गीत आज भी उतने ही ताजा और प्रिय लगते हैं। इन्हीं मधुर स्वरों से स्वर से सजा एक प्यारा सा गीत अब हम सुनने जा रहे हैं। ये गीत उन दिलों की कहानी कहता है दोस्तों, जो लाख इनकार करे मगर आखिरकार मोहब्बत के आगे हार ही जाता है। कभी नजरें झुकती हैं, कभी मुस्कान राज खोल देती हैं। तो आइए सुमन कल्याणपुर जी की सुरीली आवाज और इस दिलकश नगमे के साथ मोहब्बत के उस खूबसूरत लम्हों को महसूस करते हैं, जहां इनकार की राहें भी इकरार तक पहुंच जाती हैं।

श्रोताओं, हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर का जिक्र जब भी होगा, मधुरता, सादगी और सुरों की पवित्रता की मिसाल बन चुकी सुमन कल्याणपुर जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। अपनी मीठी, कोमल और दिल को छू जाने लेने वाली आवाज से उन्होंने लाखों श्रोताओं के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। सुमन कल्याणपुर जी की गायकी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बिना किसी बनावट के सीधी भावनाओं तक पहुंच जाती थी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी आत्मीयता थी जो सुनने वालों को अपने साथ बहा ले जाती थी। चाहे रोमानी गीत हों, विरह के नगमे हों या चुलबुले अंदाज के गीत, सुमन जी ने हर रंग को अपने स्वरों से यादगार बना दिया। इन्हीं सुरमई यादों को नमन करते हुए अब हम सुनवाने जा रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में एक ऐसा लोकप्रिय गीत जो हर किसी की जुबान पर था और आज भी है दोस्तों। तो आइए सुरों की इस अनुपम साधिका को श्रद्धा और प्रेम के साथ याद करते हुए सुनते हैं ये मधुर नगमा और महसूस करते हैं उस जादू को जो केवल सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में ही हो सकता था।

श्रोताओं, संगीत जगत में सुमन कल्याणपुर जी ने अनगिनत यादगार गीत दिए, लेकिन उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी भावों की सच्चाई। वो गीत को सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि उसे जीती थी। शायद यही वजह है कि उनके गाए प्रेम गीतों में एक अलग ही आत्मीयता और पवित्रता महसूस होती है। आज की इस सुरमयी प्रस्तुति में हम याद कर रहे हैं उसी महान गायिका को, जिनकी आवाज ने प्रेम, समर्पण और अपनत्व के भावों को बड़ी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया। और इसी क्रम में अब पेश है एक बेहद ही मधुर और भावपूर्ण गीत।

श्रोताओं, आज के गुलदस्ता में हमने सुरों की उस अनमोल साधिका को याद किया जिनकी मधुर आवाज ने हिंदी फिल्म संगीत को अनगिनत यादगार नगमे दिए। सुमन कल्याणपुर केवल एक गायिका नहीं थी बल्कि संगीत की उस सुरीली परंपरा की प्रतिनिधि थी जिनकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। उनके गीतों की मिठास, उनकी आवाज की सादगी और भावनाओं की गहराई आने वाली पीढ़ियों को भी यूं ही मंत्रमुग्ध करती रहेगी। कलाकार इस दुनिया से चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन उनकी कला हमेशा के लिए उन्हें अमर बना देती है। सुमन जी भी अपने सुरों के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच रहेंगी। सुर थम सकते हैं लेकिन उनकी गूंज कभी खामोश नहीं होती। आवाजें बिछड़ सकती हैं मगर यादों के आंगन में वे हमेशा महकती रहती हैं। सुमन कल्याणपुर जी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।

अभी आप सुन रहे थे कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, प्रस्तुत करता है श्री पार्वती की।

नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अर्चना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, माता पिता को इस धरती का भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। माता पिता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। हर साल माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए हम पेरेंट्स डे मनाते हैं। अभिभावकों के वैश्विक दिवस को मनाने की शुरुआत बहनों 8 मई 1973 को दक्षिण कोरिया में हुई थी। हालांकि दक्षिण कोरिया में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 8 मई का दिन चुना गया था, वहीं इस दिवस को ऑफिशियली तौर पर सेलिब्रेट करने की शुरुआत 1994 में अमेरिका में हुई थी। इस दिन को जब मनाया गया तो वह दिन जुलाई का चौथा रविवार था। इस तरह से यह हर साल जुलाई के चौथे रविवार को मनाया जाने लगा। ये दिन अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। फिलीपींस में दिसंबर महीने के पहले सोमवार को, वियतनाम में 7 जुलाई को, वहीं रूस और श्रीलंका और भारत में 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। बहनों, पेरेंट्स डे को मनाने का मकसद बड़ा ही प्यारा और अनोखा है, और हो ही क्यों ना, आखिर माँ और पिता दोनों ही बच्चों के लिए एक तरह से भगवान का ही रूप होते हैं। अपने बच्चों पर बिना मन में कोई छल कपट और प्यार की भावना से सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना पेरेंट्स ही कर सकते हैं। हर अच्छे और बुरे समय में साथ खड़े रहना, बच्चों के लिए हर वो कोशिश कर उन्हें वह सब कुछ दे देना जिसे उन्होंने अपना सहेज कर रखा था, यह सब कोई और नहीं कर सकता, माता पिता ही कर सकते हैं। माता और पिता को जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है, उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता, इसलिए भी पेरेंट्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना है। हर जगह इसके मनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है, प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करना। बहनों, एक शिशु का जब जन्म होता है तो उसका पहला रिश्ता माँ से होता है। एक माँ शिशु को पूरे 9 महीने अपनी कोख में रखने के बाद असहनीय पीड़ा सहते हुए इसे जन्म देती है और इस दुनिया में लाती है। इन 9 महीनों में शिशु और माँ के बीच एक अदृश्य प्यार भरा गहरा रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता शिशु के जन्म के बाद साकार होता है और जीवन पर्यंत बना रहता है। माता पिता और बच्चे का रिश्ता इतना प्रगाढ़ और प्रेम से भरा होता है कि बच्चे को ज़रा सी भी तकलीफ होने पर माता पिता बेचैन हो उठते हैं। वही तकलीफ के समय बच्चा भी सबसे पहले माँ पिता को ही याद करता है। अभिभावकों का दुलार और प्यार भरी पुचकार ही बच्चों के लिए दवा का काम करती है। इसलिए ही तो ममता और स्नेह के इस रिश्ते को संसार का सबसे खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है। दुनिया का कोई भी रिश्ता इतना मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति जीवन भर समर्पित होती है। अभिभावक के त्याग की गहराई को मापना भी संभव नहीं है और ना ही उनके एहसानों को चुका पाना, लेकिन उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता को प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। यह दिन विशेष रूप से अभिभावकों के लिए समर्पित है। इस दिन को दुनिया भर में लोग ऐसे

अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कहीं पर पार्टी का आयोजन होता है तो कहीं उन्हें उपहार और शुभकामनाएं दी जाती है, कहीं पर पूजा की जाती है तो कुछ लोग अभिभावक के प्रति अपनी भावनाएं लिखकर जताते हैं। लेकिन मैंने इस दिन को मनाने का तरीका कोई भी क्यों ना हो, बच्चे का अपने अभिभावक के प्रेम और इस दिन के प्रति उत्साह अलग ही होता है। बहनों, धरती पर मौजूद प्रत्येक इंसान का अस्तित्व माता पिता के कारण ही है। माँ के जन्म देने पर ही मनुष्य धरती पर आया और माता पिता के स्नेह, दुलार और संस्कारों से ही बच्चा मानवता का गुण सीखता गया। बहनों, हम अपने व्यस्त जीवन में यदि हर दिन नहीं उन्हें दे पाए, ना सही, कम से कम साल में एक दिन माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पित होकर इस दिवस को एक उत्सव की तरह मना सकते हैं। हमारे हर विचार और भाव के पीछे हमारे माता पिता द्वारा रोपित किए गए संस्कार के बीज हैं, जिनकी बदौलत हम एक अच्छे इंसान की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इस दिन को मनाना और भी आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस खास दिन पर एक गीत का आनंद लेते हैं और इस दिन को एंजॉय करते हैं।

0: Akashvani at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: इस गीत के बाद बहनों आइए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है अपनी पहचान स्वयं बनाए। वार्ताकार है अभिलाषा कुमारी। तो आइए सुनते हैं ये पूर्व प्रसारित वार्ता।
4: मनुष्य जन्म से ही अनेक पहचान लेकर संसार में आता है। नाम, परिवार, जाति, समाज, भाषा, धर्म और राष्ट्र, ये सभी पहचान उसे समाज में स्थान दिलाती है। परंतु क्या यही उसकी वास्तविक पहचान होती है? नहीं, वास्तविक पहचान वह होती है जिसे व्यक्ति अपने कर्म, विचार, आचरण और संघर्ष के

बल पर स्वयं घटता है। इसलिए कहा गया है, पहचान वही जो आपके काम से बने, ना कि आपके नाम से। आज के प्रतिस्पर्धात्मक

चरित्र नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व से निर्मित होती है। जो व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं बनाता है वह परिस्थितियों का दास नहीं होता, बल्कि उसे बदलने का साहस रखता है। ऐसी पहचान अस्थायी होती है क्योंकि वह बाहरी साधनों पर नहीं बल्कि आंतरिक गुणों पर आधारित होती है। अपनी पहचान बनाने का प्रथम चरण है आत्मज्ञान। व्यक्ति को अपने गुण, दोष, रुचियाँ, क्षमताएँ और सीमाएँ पहचाननी चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझता तब तक स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर सकता। आत्ममंथन से यह स्पष्ट होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगानी है। आत्मज्ञान हमें आत्मविश्वास देता है और यही आत्मविश्वास पहचान का आधार बनता है। अपनी पहचान स्वयं बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ संकल्प का आवश्यक है। बिना लक्ष्य के जीवन नाव के बिना पतवार के समान होता है। लक्ष्य व्यक्ति को दिशा देता है और संकल्प उसे निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति। लक्ष्य छोटे हो या बड़े, यदि वे स्पष्ट और सार्थक हो तो व्यक्ति अपने प्रयासों से उन्हें प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में जो अनुशासन और परिश्रम विकसित होता है वही व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपनी पहचान स्वयं बनाई वे परिश्रम से पीछे नहीं हटे। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। प्रतिभा बिना परिश्रम के निष्फल हो जाती है, जबकि साधारण प्रतिभा भी निरंतर अभ्यास और मेहनत से असाधारण बन सकती है। अपनी पहचान बनाने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। संघर्ष व्यक्ति को परिपक्व बनाता है और यही परिपक्वता पहचान को गहराई देती है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास है। ज्ञान व्यक्ति को अंधविश्वास, संकीर्णता और भय से मुक्त करता है। जो व्यक्ति निरंतर सीखता है वह समय के साथ प्रासंगिक बना रहता है। आज के युग में कौशल आधारित शिक्षा, तकनीकी दक्षता और नैतिक शिक्षा तीनों मिलकर व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाती है। बिना मूल्यों के बनाई गई पहचान खोखली होती है। ईमानदारी, करुणा, अनुशासन, सहनशीलता और जिम्मेदारी, ये ऐसे मूल्य हैं जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं। चरित्रवान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। समाज ऐसे ही लोगों को लंबे समय तक याद रखता है, इसलिए अपनी पहचान बनाते समय मूल्य और चरित्र को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आत्मसम्मान प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है और अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है वह दूसरों पर अनावश्यक निर्भर नहीं रहता। आत्मनिर्भर व्यक्ति आलोचनाओं से विचलित नहीं होता और प्रशंसा में अहंकार से दूर रहता है। स्वाभिमान व्यक्ति को सही गलत में अंतर करने की शक्ति देता है जो पहचान को मजबूती प्रदान करता है। अपनी पहचान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं बनती बल्कि सामाजिक योगदान से भी बनती है। समाज के प्रति कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति अधिक सम्मान पाता है, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संस्कृति या सेवा का क्षेत्र हो। सकारात्मक योगदान व्यक्ति की पहचान को व्यापक बनाता है। समाज के साथ जुड़कर किए गए कार्य व्यक्ति को स्वार्थी से सार्थक बनाते हैं। असफलता पहचान के मार्ग की बाधा नहीं बल्कि शिक्षक होती है। जो व्यक्ति असफलताओं से सीखता है वही अंततः सफल होता है। धैर्य और निरंतरता पहचान निर्माण के अनिवार्य तत्व हैं। एक दो असफल प्रयासों से हार मान लेना पहचान को कमजोर करता है, जबकि धैर्य के साथ किया गया प्रयास व्यक्ति को मजबूत बनाता है। इसमें हम कल्पना चावला का नाम देखते हैं जिन्होंने हमारे भारत में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। आधुनिक युग में, डिजिटल युग में अपनी पहचान बनाने के लिए नए अवसर हैं। सोशल मीडिया, लेखन कला, उद्यमिता और नवाचार, इन माध्यमों से व्यक्ति अपनी विशिष्टता प्रस्तुत करता है। परंतु वास्तविक पहचान वही होती है जो गुणवत्ता, सच्चाई और निरंतरता से बनी हो। इसलिए आधुनिक साधनों का उपयोग विवेक और उद्देश्य के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देश की कुछ प्रसिद्ध महिलाओं की जीवनियों पर नज़र डाल सकते हैं, जिसमें पहले नाम के रूप में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी

मुर्मू का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने कई कठिनाइयों का सामना करते हुए देश का सर्वोच्च पद हासिल किया। खेल के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम साइना नेहवाल, हिमा दास, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक, दीपिका कुमारी शामिल हैं, जिन्होंने अलग अलग खेलों में देश का नाम रोशन किया है। साथ ही क्रिकेट में मिताली राज, स्मृति मंधाना और टेनिस में साइना मिर्जा जैसी दिग्गज हस्तियां भी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करके अपनी पहचान स्वयं बनाई है। संगीत के क्षेत्र में बात करें तो लता मंगेशकर ने अपनी गायकी की दम पर न केवल अपनी विशिष्ट पहचान बनाई बल्कि उन्हें भारत रत्न मिला एवं दुनिया उन्हें स्वर कोकिला के नाम से पुकारती है। आशा भोसले, श्रेया घोषाल एवं लोक गायिका शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी, मैथिली ठाकुर जैसी महिलाओं ने अपनी गायकी का लोहा मनवाया है और आज ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि अपनी पहचान स्वयं बनाना कोई एक दिन या अचानक हुई प्रक्रिया नहीं है बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतर आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता और निरंतर आगे बढ़ता रहता है, तब उसकी पहचान समाज में स्वतः स्थापित हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होकर अपने सपनों को पहचाने और उन्हें साकार करने का साहस करे और अपनी पहचान स्वयं बनाए।

0: AIR at 90.
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी मैंने सुनी थी पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय था अपनी पहचान स्वयं बनाए। वार्ताकार थी अभिलाषा कुमारी। मैंने इंद्रधनुष को पेंट करने की बजाय क्यों ना इंद्रधनुष के रंगों को खाया जाए। लाल, नारंगी, पीला, हरा, सफ़ेद, नीला और बैंगनी, इन रंगों में से प्रत्येक के अपने स्वास्थ्य लाभ हैं, जिनमें शामिल है बेहतर दृष्टि, सूजन की कमी।

कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह सहित पुराने बीमारियों का कम जोखिम और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली। बहनों, ये लाभ उन फाइटोकेमिकल्स के कारण है जो इन खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। फाइटोकेमिकल्स खाद्य पदार्थों को उनके विशिष्ट सुगंध और स्वाद भी देते हैं, जबकि हर रंग कुछ लाभ प्रदान करता है। जब इसे अन्य रंगों के साथ जोड़ा जाता है तो इसके स्वास्थ्य का लाभ, इसका प्रभाव आश्चर्यजनक हो जाता है। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के रंगों को खाना महत्वपूर्ण है। रंग बिरंगे फल और सब्जियों न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि शरीर को निरोग रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लाल रंग के खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर, चुकंदर, स्ट्रॉबेरी में लाइकोपीन पाया जाता है, जो हृदय को स्वस्थ रखने, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने और कैंसर और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में सहायक है। वहीं बहनों, नारंगी और पीले रंग के फल जैसे गाजर, आम, संतरा में कैरोटीनॉइड से भरपूर होते हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, आंखों की रोशनी सुधारते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं। हरे रंग की सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, एवोकाडो भी अत्यंत गुणकारी हैं। इनमें मौजूद विटामिन, फाइबर्स और फॉलिक एसिड कैंसर से बचाव करते हैं और विशेष रूप से गर्भवती महिला और शिशुओं के विकास के लिए अनिवार्य है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए भोजन में इंद्रधनुषी रंगों का होना आवश्यक है। सफ़ेद और भूरे फल सब्जियाँ जैसे प्याज और लहसुन फ्लेवोनॉइड्स और एलिसिन से युक्त होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती, बीपी नियंत्रण और कैंसर से बचाव में सहायक होते हैं। नीले बैंगनी खाद्य पदार्थ जैसे ब्लूबेरी और बैंगन एथोसाइनिन के कारण मस्तिष्क स्वास्थ्य, याददाश्त और हृदय की सुरक्षा के लिए बेहतरीन है। तो बहनों, आप अपने नाश्ते और भोजन में इंद्रधनुष के रंगों के सब्जी और फलों को शामिल करें। और अब अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देकर चलते चलते आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
4: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में। आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
2: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
4: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
2: जी,
4: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
2: जी,
4: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
2: जी,
4: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
2: जी।
4: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
2: जी,
4: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
2: जी,
4: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
2: जी।
4: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
2: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
4: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
2: जी,
4: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
2: जी,
4: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है,

0: के लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी,
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है। सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार

0: एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो।
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए।
1: जी,
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी,
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल,
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी,
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी,
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी,
0: और एक और सरल उपाय है।
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है। गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी,
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी,
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी,
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी,
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए चामालाल मंडल के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं देवी गीत।

0: AIR at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं चामालाल मंडल। इनकी आवाज में अब प्रस्तुत है लोक भजन।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, लोक रंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। भाजपा के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में मंथन। झामुमो ने 3 दिनों में तस्वीर साफ होने का किया दावा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे। 1,12,00,000 से अधिक ऋण किए गए वितरित। 75,00,000 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठकों का दौर आज भी रहेगा जारी। विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं और जनहित के कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्य में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस सख्त। राजधानी रांची में यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों

0: और स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस पार्टी के लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए और उसके बाद फिर इस पर हम लोग निर्णय लेंगे बैठ करके।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल रूप से इस योजना से जोड़ा गया है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। नगर निगम क्षेत्र के डांडीडीह की लाभुक गुलशन और समीरन खातून ने बताया कि पहले मिट्टी और खपड़े के घरों में बरसात काटना मुश्किल था, अब पक्का मकान मिलने से वे सुरक्षित और खुशहाल हैं और उन्होंने सरकार का आभार जताया है।
2: मेरा नाम समीरन खातून है। मेरा घर का बहुत दिक्कत था, पहले खपड़ा घर में रहते थे, बहुत पानी उनी चलता था, इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग मांग किए कि मेरा घर न है और अब सरकार दे दिया, हम लोग तो बहुत अच्छा से रह रहे हैं।
3: मेरा नाम है गुलशन आरा, घर डाड़ी, पहले घर टूटल उटल था, अब तो दे दिया घर, तब मेरा बढ़िया बन गया, अब बढ़िया से रहने लगे।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भी कई कामकाज का जायजा लेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और जनहित के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में झारखंड को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य में कैंसर के 35-40% मामलों का मुख्य कारण तंबाकू है। उन्होंने नशे के खिलाफ सामूहिक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonai

0: यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश में परिसीमन की चर्चाओं के बीच रांची में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अगुवाई में आदिवासी समाज की अहम बैठक हुई। इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने की आशंका पर चिंता जताई गई। श्री तिर्की ने बताया कि इस मुद्दे पर 17 जून को सर्वदलीय बैठक और 2 अगस्त को रांची में आदिवासी महाजुटान आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
1: 2 अगस्त को पूरे राज्य के आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया, तो पूरे राज्य के आदिवासी वहां आएंगे और ये परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का हम तार्किक रूप से कानूनी तरीके से बताएंगे कि हमारी संख्या किसी हालत में नहीं घटनी चाहिए, ये पूरे चीजों को लोगों को बताया जाएगा।
0: राजधानी रांची में पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। रांची के ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी ने आम जनता से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने की अपील की है।
2: देखिए, पिछले एक हफ्ता में देखा जा रहा है कि जितने भी ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस हैं या फिर एक्सीडेंट के केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसका जो मुख्य कारण जो हम लोग को सामने आ रहा है कि लोग शराब का सेवन करने के उपरांत गाड़ियां चलाते हैं, तो ये स्पेशल जो ड्राइव चलाई गई है हम इसको कॉन्फिडेंस बेसिस पे चला रहे हैं और आगे भी इसको चलाते रहेंगे ताकि इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह इनमें घटौतरी आ सके।
0: मौसम विभाग ने बोकारो, रामगढ़ और सिमडेगा जिले के कुछ इलाकों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी की है। अगले 1 से 3 घंटे में इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज करते हुए यह 23,551 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में पहली बार आयोजित हो रही झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खेल जगत में भारी उत्साह है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि 10 जून से शुरू होने वाली यह लीग राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने के अवसरों का नया द्वार खोलेगी।
3: जो बड़े खिलाड़ी हैं जिनको सारे लोग अभी जानते हैं, लेकिन ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनको शायद दुनिया ने अभी नहीं देखा है, तो उनको अपने टैलेंट को दिखाने का ये बेहतर मौका है। कोई खिलाड़ी जो है इसकी उसको मलाल ना रहे कि मुझे मौका नहीं मिले। जो टी है ब्रांड T20 का झारखंड लीग का तभी बनेगा जब इसकी फैन बेस बढ़े, इससे हमारे झारखंड के खिलाड़ी जो है उनको इसका लाभ।
0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद में गुजरात के 155 रनों के जवाब में बेंगलुरु ने विराट कोहली की नाबाद 75 रनों की पारी की बदौलत 18वें ओवर में जीत दर्ज की। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं राजस्थान के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक 776 रन बनाकर सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप और उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। भाजपा के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में मंथन, झामुमो ने 3 दिनों में तस्वीर साफ होने का किया दावा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे, 1,12,00,000 से अधिक ऋण किए गए वितरित, 75 लाख से अधिक लोग हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैराथन समीक्षा बैठकों का दौर आज भी रहेगा जारी। विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी योजनाओं और जनहित के कार्यों की करेंगे समीक्षा। राज्य में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस सख्त। राजधानी रांची में यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तेज किया अभियान। और 10 जून से शुरू हो रहे झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह। JSC अध्यक्ष ने कहा, राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जाने के खुलेंगे नए द्वार। इसके साथ ही आकाश

आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को पुनः जारी रखते हुए चामालाल मंडल की आवाज में अब सुनते हैं झूमर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। श्यामानल मंडल से अभी आप सुन रहे हैं लोकगीत, इनकी आवाज में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिए एक निर्गुण के रूप में।

श्यामालाल मंडल के गाए इस निर्गुण के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन, प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

सभी श्रोता बहनों को आरू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जिस तरह से हमारा पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है, गर्मी की जगह बारिश हो रही है, बारिश की जगह सूखा पड़ रहा है, कहीं ठंड कभी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी, ऐसे में बहनों, हम और आप अगर अपने स्तर से जागरूकता के साथ पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति इतनी विनाशकारी हो जाए कि इंसान का और पृथ्वी से जीवन का वजूद ही मिट जाए। बहनों, अब सवाल यह है कि हम अपने स्तर पर क्या करें। तो बहनों, पानी को व्यर्थ कहीं भी बर्बाद ना होने दें, अपने आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। अगर आप फ्लैट वाले मकान में रहते हैं तो भी आप अपने बालकनी में कुछ पौधों को तो लगा ही सकती हैं। साथी बहनों, जहाँ तक संभव हो सके, पेट्रोल, डीजल और गैस की जगह सोलर एनर्जी, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं, बायोगैस, पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की कोशिश करें। बेमतलब की बिजली बर्बाद ना करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। तो बहनों, अब बात करते हैं कि आज के विशेष दिन की। बहनों, हर साल 1 जून यानी कि आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दूध को हमारे दैनिक जीवन में एक संपूर्ण आहार माना गया है, जो नवजात शिशु से लेकर वृद्ध तक हर आयु वर्ग के पोषण का एक प्रमुख स्रोत है। बहनों, यह दिवस न केवल दूध के स्वास्थ्य संबंधी लाभों को रेखांकित करता है, बल्कि उस विशाल डेयरी उद्योग और करोड़ों पशुपालकों के योगदान को भी सम्मानित करता है, जो रात दिन मेहनत करके हम तक दूध पहुंचाते हैं। बहनों, विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणाली में दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व को पहचानना, पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना और डेयरी क्षेत्र से जुड़े आर्थिक पहलुओं को बढ़ावा देना है। बहनों, प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही दूध को एक संपूर्ण आहार मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध में शरीर के विकास और सुचारू संचालन के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम दूध में दूध जो है बहनों, कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यह बढ़ती उम्र के बच्चों और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमजोरी से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए अनिवार्य है। बहनों, दूध में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों के निर्माण, उनकी मरम्मत और कोशिकाओं के विकास के लिए दूध में मौजूद कैशीन और वे प्रोटीन बेहद फायदेमंद होते हैं। बहनों, दूध विटामिन और खनिज के अलावा ऊर्जा का भी बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही बहनों, एक अब सवाल ये आता है कि 1 जून को ही क्यों चुना गया, जब FAO ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। तो बहनों, जब इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया, तब कई देशों से सुझाव मांगे गए और अधिकांश देशों ने 1 जून के आसपास पहले से ही राष्ट्रीय दूध दिवस मनाने की बात कही। इसलिए वैश्विक स्तर पर एकरूपता बनाए रखने के लिए 1 जून की तिथि को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में चुना गया। बहनों, इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं अभी, कि इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणाली में दूध और डेयरी उत्पादों को महत्व को पहचानना और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा बहनों, डेयरी क्षेत्र केवल पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में, विशेषकर विकासशील देश जैसे हमारा देश भारत है, ऐसे देशों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वैश्विक स्तर पर लगभग 1 अरब से अधिक लोगों की आजीविका सीधे या परोक्ष रूप से डेयरी के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में डेयरी फार्मिंग में महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है। पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिससे उनके सामाजिक स्तर में व्यापक सुधार हुआ है।
बहनों, खेती में फसल खराब होने या सूखा पड़ने की स्थिति में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट यानी कि सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे उनकी दैनिक आय सुनिश्चित रहती है। बहनों, हमारे देश में जब दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो भारत का नाम वैश्विक पटल पर सबसे ऊपर आता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में लगभग 24% से अधिक का योगदान देता है। और यह सफलता जो है बहनों, ये रातों रात नहीं मिली है। 1970 के दशक में हुए ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का अग्रणी उत्पादक बना दिया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने कोऑपरेटिव मॉडल यानी कि सहकारी मॉडल की नींव रखी और गुजरात के आनंद से शुरू हुआ एक दूध उत्पाद का सफर जो आज देश के कोने कोने में फैल चुका है। बहनों, अभी जो डेयरी है उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी होती है, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण और अनियंत्रित मौसम के कारण पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी दूध देने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। चारे की कमी और पानी का संकट इस समस्या को और गंभीर बना देता है। साथ ही मवेशियों की पाचन प्रक्रिया से निकलने वाली मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देती है। इस कारण डेयरी क्षेत्र पर टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाने का भारी दबाव है। साथ ही बहुत सारे पशु रोग होते हैं, जैसे खुरपका, मुंहपका और लंपी स्किन डिजीज जैसी महामारियों के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आ रही है वह है बाजारों में सिंथेटिक और मिलावटी दूध की मौजूदगी, जो एक बड़ी चुनौती है। बहनों, विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस के अवसर पर हर साल एक विशेष थीम के तहत काम किया जाता है, जिसका झुकाव पर्यावरण और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में डेयरी उद्योग को बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाने अनिवार्य हैं, जैसे कि पौष्टिक और संतुलित पशु आहार सारे पशुओं को मिले, तकनीकी का उपयोग हो, जैसे डेयरी फार्म में स्मार्ट रियरिंग, AI पर आधारित स्वास्थ्य निगरानी और आधुनिक दुग्ध दोहन मशीनों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं बहनों कि विश्व दुग्ध दिवस जो है महज दूध पीने के फायदों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह उस पूरी श्रृंखला के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। गाय भैंस जैसे मवेशियों की निस्वार्थ सेवा और किसानों के पसीने की बदौलत ही सुबह की चाय से लेकर रात के हल्दी वाले दूध तक का सफर तय होता है। इस विश्व दुग्ध दिवस पर हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हम दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व को समझें, भोजन की बर्बादी को रोकें और हमारे अन्नदाताओं यानी कि किसानों और पशुपालकों के अधिकारों और कल्याण के लिए आवाज उठाएं। तो दूध का एक गिलास न केवल सेहत की गारंटी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि का भी प्रतीक है। तो बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ संदेशों को।

सभी श्रोता बहनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, आज सोमवार है तो क्यों ना कार्यक्रम में गीत संगीत की शुरुआत एक शिव भजन से की जाए। तो सुनते हैं यह शिव भजन।

0: बहनों, इस बहुत ही सुंदर से शिव भजन के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, महिला सशक्तिकरण जो है आज के समय की मांग है, क्योंकि चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, वो सिर्फ पुरुषों के सहारे नहीं आगे जा सकता, क्योंकि जब बात आर्थिक हो, सामाजिक हो या पारिवारिक हो, महिलाओं का योगदान भी बराबर होता है और कहीं कहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है। तो बिना जब आपके परिवार के आधे लोग अगर सशक्त नहीं रहेंगे तो सशक्तिकरण की बात नहीं हो सकती और ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की बात नहीं हो सकती। तो बहनों, इसी पे सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ता का विषय है महिला सशक्तिकरण और वार्ताकार है संगीता शर्मा।
1: महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाएं अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, ताकि समाज में अपनी सही स्थान स्थापित कर सके। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाना, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके प्राप्त हो, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य होता है महिलाओं को शक्ति प्रदान करना, जिससे वे हमारे समाज में पीछे न रहे और पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर फैसले ले सके तथा अपना सिर उठाकर चल सके। महिला का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिससे महिलाओं के सर्वसंपन्न तथा विकसित होने हेतु संभावनाएं के द्वार खुले, नए विकल्प तैयार हो, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिशुपालन, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिंग सुविधाएं, कानूनी हक तथा प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हो। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां पर पुरुष का प्रत्येक क्षेत्र में स्थान होता है और महिलाएं केवल घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती है, साथ ही उन पर कई पाबंदियां भी होती है। भारत की लगभग 50% आबादी महिलाओं की है, अर्थात देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आज तक सशक्त नहीं है और बहुत से सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। भविष्य में इस आधी आबादी को मजबूत किए बिना हमारे देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे देश को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार पुरुष और स्वयं महिलाएं द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं को उनके परिवार और समाज के द्वारा दबाया गया, उनके साथ बहुत प्रकार से हिंसा की गई तथा परिवार और समाज में भेदभाव किया गया, ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई देता है। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिलाएं देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सिर्फ महिलाओं के पूजने से देश के विकास की कल्पना को पूरा किया जा सकता है। आज के समय में आवश्यकता है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का प्रत्येक क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, क्योंकि यही देश के विकास का आधार बनेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया, लोगों को जगाने के लिए महिला को जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मानने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और ऐसे ही दूसरे विषय। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की कोशिशों की वजह से ही सती प्रथा को खत्म किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत हुई। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। उनमें से कई सारी योजनाएं रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों के लिए चलाई जाती है। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं के परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है, ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा जा सके। उनमें से कुछ मुख्य योजनाएं मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना, जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई जाने वाली योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अंतर्गत लड़कियों के बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर लोगों के सोच को बदलने का कार्य किया जा रहा है। महिला हेल्थ लाइन योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत देश में 181 नंबर को डायल करके महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। पंचायती राज योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण। वर्ष 2009 में भारत के केंद्रीय मंत्री

0: मंडल ने पंचायती राज संस्थान में 50% महिला आरक्षण की घोषणा की। इसके तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। उज्ज्वला योजना, यह योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए की जाती है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है। स्टेप सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है, ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कि कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। महिला शक्ति केंद्र, यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्रों और पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयं सेवक ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: बहनों, इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया हो। दीजिए इजाजत सभी को। आरू का नमस्कार।

आप सुन रहे थे बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन सीटों में से 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम

0: को मतों की गिनती होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम कौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 3 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। इधर पटना में कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ा जाएगा। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कयाची के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम कयाची के नादरागंज ब्रह्मणी घाट के निवासी हैं। उन्होंने जेईई मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतन राम मांझी ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। वहीं सिटी बसों के किराए में भी 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के पछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साज काउंसिल की खाली हुई 10 नशस्तों के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल भी शुरू हो गया है। इन सीटों में 9 सीट के लिए 2 साला इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि साबिक वजीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफा से खाली हुई 1 सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। इंतखाबी कमीशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक नामजदगी की आखिरी तारीख 8 जून तक मुकर्रर है। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों पर 18 जून को पोलिंग होगी और इसी दिन शाम को वोटों की गिनती होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों की मुद्दत कार 28 जून को पूरी हो रही है। ज़राअत व किसान फलाह के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से मुल्कगीर खेत बचाओ मुहिम का आगाज़ किया। ये मुहिम 3 जून तक चलेगी। मुहिम का खास मकसद केमिकल्स का मुतवाजिन और मुनासिब इस्तेमाल बढ़ाना, मौसम के चैलेंजेस से किसानों को बरवक्त सलाह देना और पंचायत सतह पर अवामी हिस्सेदारी को यकीनी बनाना है। इधर पटना में ज़रई भवन में मुनक़द प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान काश्तकारों को कीमियाई खाद की जगह ग्रीन खाद के इस्तेमाल के लिए तरगीब दी जाएगी। जनाब सिन्हा ने बताया कि मुहिम के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि मंसूबे से भी मरबूत किया जाएगा। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस इम्तहान में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 मार्क्स हासिल करके कॉमन रैंक लिस्ट में अव्वल मकाम हासिल किया है। शुभम गया जी के नादरागंज ब्रह्मनी घाट के बाशिंदा हैं। उन्होंने JEE मेंस के दोनों सेशन में 100% हासिल किए थे। वजीर आला सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना की है। गया के MP और मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने श्री कुमार को बिहार का फख्र बताते हुए इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। रियासत में सरकारी बसों से सफ़र आज से महंगा हो गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बस किराए में 10 से 15 फीसद तक का इजाफा किया है। वहीं सिटी बसों के किराए में भी 15 फीसद तक का इजाफा किया गया है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये का इजाफा किया है। अब पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडरों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नई कीमतें आज से नाफिज हो गई हैं। रियासत में बारिश के सरगर्मियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे ज़्यादा 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का इम्कान जताया है। इस दौरान जनूब मगरबी, जनूब वस्त और जनूब मशरक़ी हिस्से के कुछ ज़िलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का अंदेशा है। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में जराइम पेशा अफराद ने बदनाम जमाना गोविंद शर्मा को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से मौके की ताक में रहे जराइम पेशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जाए वकूफ पर ही इसकी मौत हो गई। महलूक मुजफ्फरपुर के उस वक्त के मेयर समीर कुमार और ज़मीन ताजिर आशुतोष शाही कत्ल मामले का अहम मुलजिम था। बेगूसराय ज़िला के बछवाड़ा थाना हलका में पुलिस ने छापामारी करके तकरीबन 83 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज।

0: दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।

0: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
6: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दिल एक मंदिर का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। दोस्तों, यादें कभी पुरानी नहीं होती। वक्त भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ आवाज़ें, कुछ गीत और कुछ एहसास दिल के किसी कोने में हमेशा महफूज रहते हैं। जब भी उनका जिक्र होता है, मन अनायास ही बीते हुए सुनहरे दिनों की ओर लौट जाता है। ऐसी ही एक अमर और मधुर आवाज थी सुमन कल्याणपुर जी की। उनकी गायकी में एक अनोखी कशिश थी जो श्रोताओं के दिलों को छूकर सीधे उनकी भावनाओं से जुड़ जाती थी। सुमन जी ने अपने लंबे संगीत सफर में अनेक ऐसे गीत दिए जो आज भी रेडियो की फिजाओं में गूंजते हैं और सुनने वालों के दिलों को सुकून से भर देते हैं। उनकी आवाज में न कोई बनावट, न कोई दिखावा, बस सुरों की सच्चाई और भावनाओं की गहराई थी। शायद यही वजह है कि आज भी जब उनके गीत सुनाई देते हैं तो दिल बरबस उन्हें याद करने लगता है। और यादों के इसी खूबसूरत सिलसिले में अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसका शीर्षक मानो आज की श्रद्धांजलि का एहसास बन गया है। सचमुच दोस्तों, जब सुमन जी के गीतों की बात होती है तो दिल एक बार फिर से उन्हें याद करने लगता है। आइए सुरों की इस अनुपम साधिका को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और सुनते हैं ये सदाबहार नगमा और उनकी मीठी आवाज की उस अनमोल यादों को फिर से अपने

श्रोताओं, कुछ भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती। ये आंखों में उतरती हैं, मुस्कानों में झलकती हैं और कभी कभी गीतों के माध्यम से अपने दिल की बात कह जाती हैं। हिंदी फिल्म संगीत में ऐसे ही कोमल और सच्चे जज्बातों को अपनी मधुर आवाज से सजाने वाली महान गायिका थी सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर जी की गायकी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो बिना किसी शोर शराबे के सीधे दिल तलक पहुंच जाती थी। उन्होंने अपने स्वरों से प्रेम, समर्पण और मासूम भावनाओं को जिस खूबसूरती से अभिव्यक्त किया, वो आज भी श्रोताओं के मन में बसी हुई है। उनके गाए गीतों में अक्सर दिल की वही अनकही बातें सुनाई देती हैं जिन्हें कहने का साहस हर किसी में नहीं होता। शायद यही कारण है कि उनकी आवाज आज भी उतनी ही आत्मीय लगती है जितनी दशकों पहले लगती थी। तो आइए, सुमन जी की सुरीली यादों को नमन करते हुए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें प्रेम का इजहार शब्दों से कम और भावनाओं से ज्यादा होता है। सुमन कल्याणपुर जी के मधुर स्वरों और सुनहरे दौर की यादों से सजा ये गीत अब आपकी नजर। सुनिए, महसूस कीजिए और उनकी अमर आवाज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो अपनेपन का एहसास बन जाती हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ भी कुछ ऐसी ही थी दोस्तों, मधुर, सरल और दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाली। उन्होंने अपने स्वरों में न केवल गीतों को सजाया बल्कि उन्हें एक ऐसी आत्मा दी कि वे आज भी श्रोताओं के दिलों में उसी ताजगी के साथ बसे हुए हैं। सुमन जी के गाए गीतों में प्रेम की मासूमियत, रिश्तों की गर्माहट और भावनाओं की सच्चाई सहज ही महसूस की जा सकती है। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो हर शब्द को और भी खूबसूरत बना देती थी। यही वजह है कि उनके गीत आज भी सुनने वाले के होठों पर मुस्कान और दिल में यादों की हलचल पैदा कर देते हैं। तो अब सुनते हैं एक ऐसा ही चंचल, मधुर और दिल को छू देने वाला वो गीत जो गाने दो दिलों के बीच चल रही प्यारी सी बातचीत का हिस्सा हो। और जब इस गीत में सुमन कल्याणपुर जी की सुरों की मिठास खुल जाती है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो आइए सुरों की इस अनुपम साधिका को श्रद्धा और प्रेम के साथ याद करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और खो जाते हैं सुनहरे संगीत दौर की मीठी सी यादों में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, शुरू की इस खूबसूरत यात्रा में आज हमने याद किया उस मधुर कंठ को, जिन्होंने अपनी सादगी, मिठास और भावपूर्ण गायकी से हिंदी फिल्म संगीत को अनमोल धरोहरें दी। सुमन कल्याणपुर जी के गाए गीत केवल धुनें नहीं हैं, बल्कि वो यादें हैं जो पीढ़ियों से श्रोताओं के दिलों में महक रही हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसी पवित्रता थी जो हर गीत को आत्मा से जोड़ देती थी। समय बदलता गया, संगीत के रंग बदलते गए, लेकिन सुमन जी के सुरों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। आज भी उनके गीत हवा में घुलते हैं तो लगता है जैसे बीते हुए सुनहरे दिन फिर से लौट आए हों। सुमन कल्याणपुर जी आज भले हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत और उनकी मधुर स्मृतियाँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी। यही किसी सच्चे कलाकार की अमरता होती है। सुरों की दुनिया में कुछ आवाज़ें कभी खामोश नहीं होती, वे समय के पार जाकर भी दिलों में गूंजती रहती हैं। सुमन जी की आवाज़ भी एक ऐसी ही अनमोल विरासत है जो सदैव हमारे साथ रहेगी। दोस्तों, इन्हीं भावपूर्ण स्मृतियों के साथ हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी चित्रपट से कार्यक्रम के एक नए अंक में कुछ और यादगार गीतों और सुनहरी यादों के साथ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बांग्ला गान। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं श्यामल मित्रा को।

AIR at 90. अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं बांग्ला गान।

और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला गान, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति की आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से लेकर शाम 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और शाम 5 बजे से इन्हीं मीटरों पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।

0: इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: हाँ तो मंजू जी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
4: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
3: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
4: और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
3: शुभकामनाएं
4: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
3: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
4: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
3: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है जी. और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है.
1: बिल्कुल. और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं.
0: बिल्कुल.
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं. और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है. 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया. इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है. तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं. और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है. और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है. बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं. और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है. वे अपनी को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं.
0: हाँ बिल्कुल. और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना?
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना? तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है. ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं, नहीं
0: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है. और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए.
1: बिल्कुल. और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है. उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है. जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें

0: उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो खैर बच्ची की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता
0: ही नहीं चलता था, और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो, तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तक को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते थे, और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य।
0: और देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं, जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना, दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी,
1: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है, और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता, जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं, उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो, पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन लें।

0: हाँ
1: तो देखिए, अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई, तो तबीयत खराब हुई, तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबीयत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
1: वहम नहीं होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे, हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, हाँ। आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को पिला सकते हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे है ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मंगोड़ी 1 कप, मुंगोड़ी 1 कप, आलू
0: चाहिए आधा कप
1: आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगोड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगोड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें, उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं, अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे, भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगोड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें, कढ़ाई को ढक कर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगोड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए, अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें, आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगोड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगोड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती है सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी की दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गर्म गर्म तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद ले। जी, गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खूखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्य

0: बताए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
1: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
1: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
1: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
1: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशंस में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
1: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
1: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
1: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में
1: जाएंगे, तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशंस होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज मैं बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स आल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
1: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
0: जी,
1: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह, जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीस।

0: मिलते हैं मेडिकल शॉप में, अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों की
0: एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके एक या दो दांत या चार दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल,
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा।
1: हाँ।
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है, बाहर इजिली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक, उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते हैं।
0: लेकिन नस तक
1: अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है और दांतों को खून

0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है, असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
0: होता है,
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात
1: यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं, हाँ उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
0: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
1: एग्जैक्टली। नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
0: जी।
1: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो वो सिक्रीशन कम होता है तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
1: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
0: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाना खाने में बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब

0: अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। सो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है महबूबा,
0: दांतों में दर्द होता है तो नैनो से तो सावन बरसना ही है।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: yes.
1: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे,
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: Exactly.
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी
1: है। Exactly. मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊं,
0: हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ।
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस।
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ। वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
0: बिल्कुल,
1: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
0: इसके
1: पा
0: बिना
1: रहा
0: भी चल सकता है,
1: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
0: अच्छा,
1: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
0: ओके,
1: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
0: तो वो
1: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
0: ओके,
1: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
0: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
1: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
0: ठीक बात है,
1: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
1: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
0: जी,
1: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
0: तो हमारे लिए भी गाइए।
1: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
0: जी।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है, ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के। क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं, दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों की अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके।
1: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है। बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने
4: बटर कंटिन्यू,
1: बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
0: ओके।
1: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा।
3: दिल की तरह नहीं,
1: स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के। फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है।
0: हाँ।
1: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में, अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है। वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है। तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है। तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है।
0: ओके।
1: सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो, तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो, या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
0: ओके।
1: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
1: हाँ जी।
0: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
1: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
0: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
1: दांतों की बीमारी नहीं है।
0: ओहो।
1: ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
0: ओके।
1: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा,
0: यस,
1: तब दांत हिलेगा।
0: तो हड्डी मामला है।
1: एग्जैक्टली। वो एक दिन में होता नहीं है, पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं। उसके भी चार स्टेजेस है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं।
0: ओके।
1: तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस।
0: ओके।
1: दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट।
0: ओके।
1: वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
0: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन
1: exactly,
0: है,
1: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है।
0: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है,
1: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो। अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
0: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं,
1: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
0: जी,
1: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से,
0: हाँ जी,
1: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए, बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया, तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
0: कितना नॉर्मल है ना,
1: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है,
0: बिल्कुल,
1: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
0: यस।
1: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
0: यस।
1: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है,
0: बिल्कुल,
1: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
0: वो सारी
1: चीजें,
0: तंबाकू, स्मोकिंग,
1: और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
0: दांतों की,
1: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
0: अरे अरे।
1: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है,
0: बिल्कुल।
1: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो,
0: बिल्कुल,
1: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
0: इसी हाँ। बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
1: सही है। तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे,
0: वाह, पर हम वफा करना सीख,
1: क्योंकि आपने
0: करना सीख।
1: एग्जैक्टली।
0: क्या बात है, सुनते।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रिस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है, आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स दो दिन में तीन दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को दो दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
0: बहुत कम है,
1: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक।
0: इक्विवेलेंट है,
1: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
0: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता
1: है। इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
0: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
1: Exactly.
0: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
1: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच सर।
0: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ

0: पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगाहर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी युवाओं का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। हम हर शाम की तरह आज शाम भी हाजिर हैं आपके इस ज्ञानवर्धक और मनोरम कार्यक्रम के साथ। और आज के इस खास कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपकी रेडियो साथी कंचन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी श्रोता स्वस्थ होंगे और हमारे दैनिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास होने वाला है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज के दिन विशेष की चर्चा के साथ होगी। उसके बाद सृजन में सुनेंगे ढेर सारी कविताओं को, साथ ही आज रोजगार सूचना में कुछ खास और नए जॉब ऑफर्स को जानेंगे। और कार्यक्रम के अंत में समसामयिकी की चर्चा को सुनकर कार्यक्रम से विदा लेंगे। और हमेशा की तरह कार्यक्रम को यादगार और गीतों से सुरमई बनाने के लिए सुनते रहेंगे ढेर सारे फिल्मी गीतों को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं शुरुआत में इस सुंदर से गीत को, फिल्म सैयारा से। इस गीत के गायक कलाकार हैं जुबिन नौटियाल। तो आइए गीतों को सुनते हैं और एक शानदार शुरुआत करते हैं।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये गीत तो बेहद ही प्यारा था और गीतों के साथ छोटे छोटे संदेश भी। तो आइए अब कार्यक्रम में आज के दिन विशेष की चर्चा को सुनते हैं और जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। दोस्तों, संसार में माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। उनका त्याग, प्रेम, ये दोनों अमूल्य हैं। जीवन के हर कठिन समय में माता पिता बच्चों का सहारा बनते हैं और उन्हें सफलता के लिए प्रेरित करते हैं और उनके प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञ व्यक्त करने के लिए हर साल 1 जून यानी आज के दिन को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता पिता हमारे जीवन के पहले गुरु, मार्गदर्शक और संरक्षक होते हैं। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी ताकि दुनिया भर में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान मिल सके। माता पिता अपने बच्चों की खुशियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के अवसर पर हमें अपने माता पिता के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्हें हमें धन्यवाद कहना चाहिए और हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। उनकी सहायता भी कर सकते हैं और उन्हें ये छोटे छोटे कार्य भी खुशी देते हैं और सम्मान का अनुभव कराते हैं। सही मायने में माता पिता ही हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, आज अपने पेरेंट्स को थैंक्स जरूर कहें और उन्हें ढेर सारा प्यार दें। तो इसी के साथ चर्चा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को चर्चा पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में डेली ट्रिविया में आज के खास प्रश्न को जानते हैं। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे। तो दोस्तों, अपना जवाब हमें जरूर साझा करें। तो आइए अब कार्यक्रम में सृजन में सुनते हैं ढेर सारी कविताओं को। इन कविताओं के कवि हैं सुमित कुमार। तो आइए इनके सुंदर सुंदर कविताओं और इनकी रचनाओं को सुनते हैं।
1: जैसा कि हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं, भारत गांव का देश है। असली भारत गांव में ही बसता है और उसी गांव में बसते हैं बच्चे, हमारे देश का भविष्य। और वे बच्चे बड़े होकर शहर जाना चाहते हैं। केवल गांव ही नहीं, अपितु छोटे कस्बों और छोटे शहरों के बच्चे भी बड़े होकर बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सुखी रहना चाहते हैं। तो यह कविता उन सभी छोटे बच्चों के विषय में है। यह कविता आपके विषय में है। यह कविता मेरे विषय में है, जो हमेशा सोचा करते हैं अथवा सोचा करते थे कि बड़ा होकर मैं क्या क्या कर सकता हूं। अब बिना किसी देरी के मैं कविता का आरंभ करता हूं, जिसका शीर्षक है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। एक बालक सोच रहा बैठा, मैं कितना कुछ कर पाऊंगा। दूर शहर जाकर खुद से मैं पढ़ लिख कर कमाऊंगा। जल्दी ही आएगा वह दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। नहीं मांगने होंगे पैसे किसी से कुछ भी खाने को। नहीं मांगने होंगे पैसे किसी से कुछ भी खाने को। नहीं पूछना होगा किसी से कभी भी बाहर जाने को। शीघ्र मिलेगी मुझे स्वतंत्रता, गीत खुशी के गाऊंगा। शीघ्र मिलेगी मुझे स्वतंत्रता, गीत खुशी के गाऊंगा। जल्दी ही आएगा वह दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। जल्दी ही आएगा वह दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। होंगे पैसे, मिलेंगी खुशियां, पाकर सारी सुख सुविधाएं। सब कुछ होगा रंग बिरंगा, कुछ भी ना होगी दुविधाएं। बस कुछ वर्षों की है प्रतीक्षा, फिर मैं नगर को जाऊंगा। बस कुछ वर्षों की है प्रतीक्षा, फिर मैं नगर को जाऊंगा। जल्दी ही आएगा वह दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। जल्दी ही आएगा वह दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। मिलेंगे कितने मित्र नए, नवजीवन की होगी शुरुआत। सदा रहेंगे एक साथ हम, बाधाओं को देंगे मात। बड़ा सा घर, धन सुख संपदा, सब कुछ ही पा जाऊंगा। बड़ा सा घर, धन सुख संपदा, सब कुछ ही पा जाऊंगा। जल्दी ही आएगा वह दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। जल्दी ही आएगा वह दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। कविता का प्रथम भाग समाप्त हुआ। वह बालक अब बड़ा हो चुका है। उसने पढ़ाई पूरी कर ली है, उसने नए दोस्त बना लिए हैं, वह पैसे भी कमा रहा है और एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक होता है, लगभग सभी मूलभूत सुख सुविधाएं उसके पास हैं। उसके पास वह स्वतंत्रता भी है जो वह बचपन से चाहता था। परंतु मूल प्रश्न यह है कि क्या वह वास्तव में सुखी है? क्या वह अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है? उसने यहां तक पहुंचने में क्या क्या पाया और क्या क्या खोया? जीवन के विभिन्न पहलुओं में उसका क्या अनुभव रहा? यह कविता का अगला भाग उसी विषय में है, जिसका शीर्षक है, जब से बड़ा हुआ हूं मैं। छूट गए सभी मित्र पुराने जब से बड़ा हुआ हूँ मैं, छूट गए सभी खेल पुराने जब से बड़ा हुआ हूँ मैं। कितनी होली बीत गए ना खेली फिर से वो होली, कितने बीते हैं बसंत ना सुनी है कोयल की बोली। चलता रहा हमेशा जब से निज पद खड़ा रहा हूँ मैं, छूट गए सभी मित्र पुराने जब से बड़ा हुआ हूँ मैं, छूट गए सभी मित्र पुराने जब से बड़ा हुआ हूँ मैं। माँ की ममता प्रेम पिता का घर आंगन सब छूट गया, माँ की ममता प्रेम पिता का घर आंगन सब छूट गया, मेरे भीतर कुछ कोमल सा प्यारा सा कुछ टूट गया। सावन के झूलों को छोड़कर अकेला बस में खड़ा हूँ मैं, सावन के झूलों को छोड़कर अकेला बस में खड़ा हूँ मैं, भूल गया मिट्टी की खुशबू जब से बड़ा हुआ हूँ मैं, भूल गया मिट्टी की खुशबू जब से बड़ा हुआ हूँ मैं। अविचल साहस अथक परिश्रम का केवल आभारी हूँ, धन को पाता धन देकर मैं एक षठ व्यापारी हूँ, धन को पाता धन देकर मैं एक षठ व्यापारी हूँ। जीवन अनमोल लुटाता प्रतिपल अपनी जिद पर अड़ा हूँ मैं, जीवन अनमोल लुटाता प्रतिपल अपनी जिद पर अड़ा हूँ मैं। निर्धन हूँ धन पाकर भी जब से बड़ा हुआ हूँ मैं, निर्धन हूँ धन पाकर भी जब से बड़ा हुआ हूँ मैं। ऊंचे महलों के प्रकाश से चक्षु विचलित रहते हैं, ऊंचे महलों के प्रकाश से चक्षु विचलित रहते हैं, जीवन छद्म सुखों की खोज में प्रतिपल परिगलित बहते हैं। क्या यह है वही स्वतंत्रता जिस स्वप्न पे मैं आह्लादित था, क्या यह है वही स्वतंत्रता जिस स्वप्न पे मैं आह्लादित था, क्या यह है वही नगर जहां प्रतिपद पुष्प आच्छादित था, क्या यह है वही नगर जहां प्रतिपद पुष्प आच्छादित था। प्रतिदिन प्रश्न पूछता खुद से ठिठक उसी पथ खड़ा हूं मैं, प्रतिदिन प्रश्न पूछता खुद से ठिठक उसी पथ खड़ा हूं मैं। रेत फिसलती रही हमेशा जब से बड़ा हुआ हूं मैं, रेत फिसलती रही हमेशा जब से बड़ा हुआ हूं मैं। छूट गए सभी मित्र पुराने जब से बड़ा हुआ हूँ मैं, छूट गए सभी खेल पुराने जब से बड़ा हुआ हूँ मैं, जब से बड़ा हुआ हूँ मैं। धन्यवाद। हम सब एक बेहतर भविष्य चाहते हैं, स्वयं के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए और अपनी माँ के लिए। लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता है, एक ऐसे समाज जहाँ पर महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ पर पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी महिलाएं होती हैं जो कि स्वयं को निर्बल अबला समझती हैं। हमारे समाज के लोग ही जिनकी बुद्धि अति निकृष्ट है, जो असुर हैं परंतु समाज में मनुष्य के वेश में छिपे रहते हैं, वे हमेशा मौका पाकर इनके साथ दुराचार करने का प्रयत्न करते हैं। अभी प्रश्न यह है कि इन्हें बचाएगा कौन? क्या हमारे समाज में पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम सब स्वयं में सुधार करें? क्या हमारे समाज में उन पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है जो अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा करें? लेकिन यह संभव भी नहीं है कि हमेशा पुरुष महिलाओं के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। अतः इस घोर कलयुग के समय में महिलाओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, उन्हें अपने लिए स्वयं उत्तरदायी होना होगा, स्वयं को और शक्तिशाली बनाना होगा जिससे वह समाज में बैठे इन दुष्ट प्राणियों से स्वयं की रक्षा कर सके और एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सके। मेरी यह कविता उन्हीं माताओं और बहनों को समर्पित है और कविता का शीर्षक है नारी। बिजली चमकी अति द्वेलित, नभमंडल में वज्रघोष हुआ, दिव्य तेज फिर हुआ प्रकाशित, सहसा एक उद्घोष हुआ। फिर वो बोले तुम्हें बचाने नहीं यहां मैं आया हूं, इस कलयुग में नवगीता का मैं संदेशा लाया हूँ। युद्ध नीति से परे स्वमर में तुम्हें स्वयं लड़ना होगा, त्याग सभी श्रृंगार रसों को ग्रहण असी करना होगा, त्याग सभी श्रृंगार रसों को ग्रहण असी करना होगा। हे नारी तुम कब अबला हो, हे नारी तुम कब अबला हो, अपने निज तत्व का ध्यान करो, ले उधार अस्त्र शस्त्र तुम असुरों पर संधान करो, रक्त रंजित चामुंडी का रूप तुम्हें धरना होगा, रक्त रंजित चामुंडी का रूप तुम्हें धरना होगा, बैठे अगणित महिषासुर का संहार तुम्हें करना होगा, बैठे अगणित महिषासुर का संहार तुम्हें करना होगा। हे वैदेही हे पांचाली, हे वैदेही हे पांचाली, दुर्गम साहस का करो चयन, विधिशास्त्र न्याय कब देंगे तुम्हें, अब स्वयं करो दुर्जन का दलन, विधिशास्त्र न्याय कब देंगे तुम्हें, अब स्वयं करो दुर्जन का दलन। जब हर नृप अंधा बैठा है हर सभा के राज सिंहासन में, जब हर नृप अंधा बैठा है हर सभा के राज सिंहासन में, तो कैसे दुस्साहस बल ना हो कलयुग के कर्ण दुशासन में। अट्टहास करते असुरों का वध तुमको करना होगा। इस रक्त बीज के सागर से हर बूंद तुम्हें पीना होगा। इस रक्त बीज के सागर से हर बूंद तुम्हें पीना होगा।

सूचना में। रेलवे आरआरबी एएलपी की वैकेंसियां 11,127 पदों पर निकाली गई है। इसमें आवेदन शुरू है। आवेदन की आखिरी तिथि 14 जून है। एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट 2026 में 12,256 पोस्ट की वैकेंसियां निकाली गई है। आवेदन शुरू है। आवेदन की आखिरी तिथि 22 जून तक निर्धारित की गई है। सीटेट सेप्टेम्बर ऑनलाइन फॉर्म 2026 का आवेदन जारी है और आवेदन की आखिरी तारीख 10 जून है। उम्मीदवार इन वैकेंसी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी रोजगार सूचना से जुड़ी जानकारी बेहद ही जानकारीपूर्ण थी। आशा है कि श्रोताओं को पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं इस सुंदर से गीत को फिल्म सुल्तान से। इस गीत के गायक कलाकार हैं मीका सिंह। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर से गीत को।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: इस सुंदर से गीत के बाद और छोटे संदेश के बाद अब कार्यक्रम में समसामयिकी की खबरों को सुनते हैं और जानते हैं देश विदेश की जानकारी को। भारत के नौसेना स्टाफ के 48वें उप प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल अजय कोचर ने पदभार ग्रहण किया। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार जीत हासिल की। म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि इंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। ULLAS पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 5वां राज्य सिक्किम बना। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरल राज्य ने शुरू किया है। इसी के साथ समसामयिकी की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में फन फैक्ट्स में आकाशवाणी से जुड़े कुछ खास बातों को जान ले। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पहले पूर्व मैसूर रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था। और आज के हमारे डेली ट्रिविया के प्रश्न का सही जवाब है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के 6 केंद्र थे। आशा है कि श्रोताओं को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में इस आखिरी गीत को सुनते हैं, फिल्म जवान से। इस गीत के गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह। तो आइए सुनते हैं सुंदर से गीत को।

इसी के साथ आज के कार्यक्रम का सफर यहीं खत्म होता है। आशा है कि श्रोताओं को आज के कार्यक्रम में भरपूर आनंद मिला होगा और आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपना मैसेज, सुझाव हमारे पते और मेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा पता है युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर 812001 और हमारा मेल आईडी है phair.bhagalpur@gmail.com। तो अपना सुझाव हमें याद से भेजें। तो साथियों अब हम मिलेंगे इसी कार्यक्रम में शाम के 5 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी रेडियो साथी कंचन को दे विदा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए फिल्म मुक्ति का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत रचना है राहुल देव बर्मन का।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: नमकीन फिल्म का गीत सुनिए, किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में टूटा फूटा सा एक घर, जहां चार औरतों का एक अधूरा सा परिवार रहता था। अम्मा थी 60 से ऊपर की और उसकी 3 बेटियां। मां बाप के छींटे ना पड़े होते तो तीनों ब्याही जाती। देखने

पालकी फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत रचना है नौशाद का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700014242।

0: 1-4-2-4-2 पर।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
1: करो,
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: सुनो ना।
5: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
0: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
6: पारस मने फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत लिखा है असद भोपाली ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर लोकगीत का प्रसारण किया जाएगा, कलाकार होंगे संजीत कुमार सिंह। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुनेंगे, कलाकार होंगे चंद्रशेखर। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकते हैं। 8:15 पर खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां। और 10:30 पर पसंद आपकी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

अब कुछ जानकारी कल की सभा के कार्यक्रमों की। हमारी सभा प्रातः 5:50 पर आरंभ होती है। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। 6:05 पर चिंतन मनन का प्रसारण किया जाएगा। 6:10 पर भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना का प्रसारण होगा।

6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। रामचरितमानस गान आप सुनते हैं 6:40 पर। 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें आप सुन सकते हैं मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, रसरंग, स्मृति संवाद और फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर बस में उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर लोकगीत का प्रसारण होगा, कलाकार होंगी नूतन कुमारी। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकते हैं। 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार होंगे तेज नारायण चौधरी एवं साथी। 1:30 पर धारावाहिक गंगा के सुरताल, लेखक होंगे रमेश रमण का प्रसारण किया जाएगा। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से का प्रसारण होगा। 3:00 आप सुनेंगे तरंग कार्यक्रम, कलाकार होंगे नुसरत फतेह अली खां। संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर हमारा पर्यावरण कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुनेंगे, कलाकार होंगे श्यामानंद झा। 8:00 रजनीगंधा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। रात्रि 9:30 पर नाटक लोहा सिंह का प्रसारण होगा, लेखक होंगे रामेश्वर सिंह कश्यप और प्रस्तुतकर्ता श्याम सुंदर उस्ताद। 10:00 गुंजे विहार कार्यक्रम का प्रसारण होगा और 10:30 पर भावगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज की सभा और कल की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:00 हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अन्नो का नमस्कार
1: और सभी को आरू का भी नमस्कार। अन्नो भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार आरो बहन, तब सुनाइए हाल समाचार, सब ठीक ठाक है ना?
1: बिल्कुल अन्नो भाई, सब बढ़िया है। देख रहे होंगे कि मौसम रोज अपना रुख बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी तेज धूप हो रही है, और कहीं ना कहीं इसी में हम लोग को खुद को प्रतिकूल करना पड़ रहा है।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: देखिए आरो बहन,
1: अनुकूल करना, माफ कीजिएगा, अनुकूल करना पड़ रहा है खुद को।
0: देखिए आरो बहन, मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से जो है न सिर्फ हमें बल्कि पशुधन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के साथ साथ पशु भी जो है मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है उन्हें भी लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: मौसम में बार बार होने वाले बदलाव का मानव स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है आरो बहन।
1: जी।
0: तापमान हो गया या फिर आर्द्रता हो, वर्षा और हवा में अचानक परिवर्तन से शरीर को स्वयं अनुकूलित करने में कठिनाई होती है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है।
1: बिल्कुल अन्नू भाई, और इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें अपना शरीर जो है उसको मौसम के अनुकूल बनाना चाहिए। कुछ थोड़ा सा हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है, कुछ क्रिया करना पड़ता है जिससे कि हम लोग मौसम के अनुसार खुद को ढाल सके।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि गर्मी का बात जब करते हैं तो पानी 5 से 8 गिलास पीना कम से कम। इसके बाद जब भी बाहर निकलना है तो शरीर को सूती कपड़े से ढक के निकले, सर को ढक के निकले, और खान पान हम लोग को ऐसा होना चाहिए ना कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, और ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता होता है अन्नो भाई, वो कहीं ना कहीं जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारा खान पान, दिनचर्या और सोच भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है खुद इंसान को स्वस्थ रहने में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे शरीर पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव डालती है, और मौसम का परिवर्तन भी कुछ हद तक हम लोग झेल सकते हैं अगर हम स्वस्थ रहें तो।
0: जी। देखिए आरोहण, प्रकृति में तो निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है। आज धूप है तो कल छांव भी होगा, उसी प्रकार कभी ज्यादा बारिश होती है तो कभी कम बारिश होती है, इस प्रकार जीवन का चक्र हमेशा चलता ही रहता है। तो इस चक्र के साथ साथ हम अपना तो ध्यान रखें ही, साथ ही साथ हम अपने पशुधन का भी जो है ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और पशुधन से एक बात याद आई आरोहण कि आज विश्व दुग्ध दिवस भी है।
1: बिल्कुल अन्नू भाई, 1 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, और दूध को हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त

0: है, क्या अनुभव
1: जी
0: है। इसे एक कहा था कि एक संपूर्ण आहार है, और हम लोग देखते भी हैं बच्चा कुछ सालों तक, सिर्फ कुछ महीनों तक तो बिल्कुल ही दूध पे निर्भर करता है, और
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं उसके शरीर की सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, तभी उसका ग्रोथ होता है, उसका विकास होते रहता है शरीर का। जी
1: जी। और देखिए आरोपन, आज ही के दिन यानी प्रत्येक वर्ष 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आप कहे ही, और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2001 में ही खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी।
0: जी
1: और विश्व दुग्ध दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है आरोहण, वह है दूध के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना, संतुलित आहार में दूध की भूमिका को रेखांकित करना,
0: जी
1: डेयरी उद्योग के आर्थिक और सामाजिक योगदान को पहचान दिलाना, और साथ ही दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों और उसके साथ साथ हमारे जो भी किसान दूध के कार्यों का निष्पादन करते हैं
0: जी
1: उसके लिए भी जो है सतत और आधुनिक डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना।
0: बिल्कुल अन्नू भाई, और प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही दूध को एक संपूर्ण आहार मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध में शरीर के विकास और सुचारू रूप से संचालन हेतु जो भी आवश्यक चीजें होती है वो सारी दूध में लगभग पाई जाती है, कुछ
1: जी
0: चीजों को छोड़ के, जैसे कि विटामिन सी नहीं पाई जाती है।
1: बिल्कुल, इसलिए तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है आरोहण, क्योंकि
0: जी
1: इसमें अनेक आवश्यक तत्व होते हैं, जैसा कि आप कहे ही, जैसे कि कैल्शियम हो गया जो दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही दूध में प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो शरीर की वृद्धि और उत्तकों की मरम्मत में सहायक भी होता है।
0: बिल्कुल, और विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम दोनों के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
1: जी
0: जी
1: और पोटेशियम और फास्फोरस के कारण भी जो है शरीर के विभिन्न अंगों को भी सुचारू रूप से ये चलाते हैं।
0: बिल्कुल, और अन्नू भाई, दूध जो है ना वो ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि दूध में मौजूद प्राकृतिक शर्करा जिसे लैक्टोज कहते हैं वो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है।
1: बिल्कुल,
0: और यही नहीं, दूध का सिर्फ हमारे पोषण संबंधी ही आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है दूध के द्वारा, बल्कि हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी इसका बहुत महत्व है।
1: बिल्कुल, और खासकर आरोहण यह भी देखा जाता है कि जो हमारे शाकाहारी श्रोतागण हैं उन्हें तो दूध अवश्य रूप से खाना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रोटीन के लिए जो है दूध पर निर्भर रहना ज्यादा उन्हें जरूरी हो जाता
0: सिर्फ
1: है।
0: दूध पे निर्भर नहीं बोलूंगी, प्रोटीन का शाकाहारी लोगों के लिए भी बहुत सारे दूसरे स्रोत भी हैं, जैसे कि सोयाबीन है,
1: बिल्कुल,
0: दालें हैं, और जैसे
1: सोयाबीन के साथ साथ दालें भी होती है, लेकिन अगर हम देखें तो सर्वमान और सर्वव्यापी रूप से हमें जो है दूध बड़ी आसानी से मिल जाता है आरोपण, और यह बड़ा सुपाच्य भी होता है, इसलिए दूध का सेवन करना अति आवश्यक हो जाता है।
0: जी, और ये जो है डेयरी क्षेत्र, जैसे कि कहते हैं, केवल पोषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में और विशेषकर हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। क्या
1: बिल्कुल,
0: कहते हैं भाई?
1: बिल्कुल, देखिए आरोपण, चूंकि हम यह जानते ही हैं कि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ एक ग्रामीण संस्कृति का भी देश है, मतलब गाँवों में हमारे देशों की प्राण बस्ती है।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में हम देखते हैं कि गाँव घर में जो है खेती के साथ साथ लोग, हमारे किसान भाई पशुपालन भी करते हैं, ताकि खेती के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर घास कचरे जो भी होते हैं उनका वो समावेशन करके अपने पशुओं को खिलाकर कुछ ज्यादा आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते
0: यानी
1: हैं,
0: यानी कि पूरक होता है, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसका जो उत्पाद है वो इसमें उपयोग हो जाता है, और जैसे पशुपालन में जैसे कृषि का उत्पादन हुआ, दाना हुआ, और जो हरा चारा खाता है पशु, तो वो सारा इधर पशु खा लेंगे, और फिर इधर गोबर जो होता है जो एक खाद का बायोगैस के लिए बहुत अच्छा चीज है, उसका उपयोग फिर वापस कृषि में हो जाएगा।
1: जी,
0: तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं संतुलित करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, और देखिए आरोहण, आज ना इस आधुनिकता के दौर में जो है लोग कृषि कार्य में ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर और तरह तरह की चीजों का जो है इस्तेमाल करने लगे, लेकिन एक समय भी था प्राचीन काल में जब कृषि कार्य में भी मूल रूप से पशुओं का प्रयोग किया जाता है, खास करके उस समय जो है हमारे पशु के रूप में जो है बैल जो होते थे उनसे खेत जो है जुतवाए जाते थे, और उस समय प्राचीन विधि परंपरा भी यही थी कृषि की कि जो है ज्यादा से ज्यादा बैल का प्रयोग उस समय खेती के लिए किया जाता था, और उसी प्रकार जैविक खेत खाद के रूप में भी जो है हम गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक समय में जलावन के रूप में गोइठा का प्रयोग भी हम कहीं ना कहीं जानवर के अवशिष्ट पदार्थ से ही करते थे।
0: बिल्कुल, लेकिन अन्नू भाई अभी हमारा जो समय है वो कितना भी आगे जा रहा हो, टेक्नोलॉजी कितना भी आगे जा रहा हो, अभी भी जो चीज़ें ऑर्गेनिक होती है, मतलब जो
1: जैविक रूप से जो होती है, जो प्रकृति प्रदत्त होती है,
0: उसका महत्व अभी भी बहुत ज़्यादा है।
1: बिल्कुल,
0: और वो कोई भी आधुनिक चीज़ें, मशीनें और आधुनिक जो प्रोडक्ट होता है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है जो जैविक चीजें होती है।
1: देखिए रोबन, होता क्या है ना कि अगर आप रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग कीजिएगा तो उससे उत्पादन तो कहीं ना कहीं ज्यादा अवश्य बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो उस भांति हमें उत्पादन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उससे किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या भी नहीं देखनी पड़ती है, शरीर पर किसी प्रकार के उससे जो है किसी प्रकार की हमें कोई समस्या भी नहीं देखने मिलती है।
0: और अन्नू भाई, और भी बहुत सारे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारा कृषि अर्थव्यवस्था है वो दूध से कैसे प्रभावित होता है, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारत जैसे कृषि प्रधान देश में डेयरी फार्मिंग में महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है, और जो हमारी सामाजिक असमानताएं भी हैं कहीं ना कहीं वो इन कार्यों के जरिए कम होती है, क्योंकि एक महिला भी जब पशुपालन में भाग लेती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है, जिससे उनके सामाजिक स्तर में भी सुधार होता है। और साथ ही अन्नू भाई, बड़े किसान तो बहुत सारी चीजें बाहर से भी मंगवा सकते हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन छोटे किसानों के लिए पशुपालन जो है वो बहुत बड़ा सहारा होता है।
1: जी, और इसलिए तो कहा भी जाता है ना आरोभान कि मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि आखिर कहा कि नहीं जाता है, वैसी कृषि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी समावेशन हो जाए, उन्हें हम मिश्रित कृषि कहते हैं।
0: बिल्कुल, और अन्नू भाई, ये दूध उत्पादन में भारत का बहुत अच्छा स्थान है, यह विश्व के शीर्ष देशों में से एक देशों में से है जहाँ बहुत भारी मात्रा में दुग्ध उत्पादन होता है।
1: जी
0: जी,
1: और इसलिए तो इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता था, जब हमारे देश में दुग्ध उत्पादन में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लिए और इसमें कई प्रकार के तमाम प्रकार के जो है नए नए अनुसंधान किए गए, तो इससे दूध का कहीं ना कहीं उत्पादन भी बढ़ा, और दूध में पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया जो होती है जिससे कि दूध लंबे समय तक जो है खराब होने से बच जाते हैं, जब वैसी प्रक्रिया इसमें आई तो उसके बाद जो है दूध का उत्पादन न सिर्फ बढ़ा बल्कि यह ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक हमारा दूध जो है वो ज्यादा जाने लगा, और उसके साथ साथ जो है दूध एक फैक्ट्री का रूप ले लिया, और आज देख ही सकते हैं कि कई प्रकार के जो है हमारे दूध जो है हमारे जीवन में एक तरह से पूरी तरह से शामिल हो गया है।
0: और अन्नू भाई, और भी बातें करेंगे और अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण दिवस थे, जैसे कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाते हैं और दूसरा आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस भी मनाते हैं। इस और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ।
1: बिल्कुल, देखिए विश्व माता पिता दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 1 जून को मनाया जाता है आरोबन, जैसा आप कह ही रहे थे, और इस दिवस को माता पिता के त्याग, प्रेम, समर्पण और बच्चों के पालन पोषण में उनके अमूल्य योगदान के सम्मान के रूप में भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इस दिन का उद्देश्य परिवार की संख्या को मजबूत करना और माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देना भी है।
0: बिल्कुल अन्नू भाई, जिस तरह एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है, ठीक उसी तरह एक स्वस्थ, संस्कारी और सशक्त समाज के निर्माण के लिए माता पिता की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती
1: बिल्कुल।
0: है। तो इस वैश्विक अभिभावक दिवस के अवसर पे क्यों ना हम लोग सभी अभिभावकों को बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं, और साथ ही अपने अभिभावक को ही, क्योंकि आज हम लोग कुछ भी करेंगे या कुछ भी हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए कहा भी गया है कि प्रथम शिक्षक जो होता है वो माता पिता ही होता है आरोहन, और माता पिता जो है वो हमें बोलना, चलना, व्यवहार करना और जीवन के मूलभूत मूल्य भी सिखाते हैं, इसलिए उन्हें बच्चे का पहला शिक्षक भी कहा जाता है। आरोहन, बातचीत और भी जारी रहेगी, अभी अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक प्यारा सा देवी गीत सुनते हैं।
0: जी।

0: जी, लाले लाले फुलवा फुलाए माया जगह की ही,
1: बिल्कुल
0: बहुत ही प्यारा सा देवी गीत यह था। पूरा मन आह्लादित हो गया आरोबहन। और अब हम लोग लगे हाथों तो कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को भी सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: Akashvani at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जी, महत्वपूर्ण संदेशों के बाद एक बार फिर से हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थ में। आरोभान, जैसा कि हम लोग बातचीत कर ही रहे थे अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कृषि प्रधान देश के बारे में, तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश तो है ही, साथ ही साथ हमारे देश की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है। इसलिए देश के समग्र विकास के लिए गांव का विकास अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में नवाचार यानी कि नई सोच, नई विचार, नई तकनीक गांव के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है।
1: बिल्कुल,
0: गांव के विकास में नवाचार की भूमिका, इस विषय पर हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं
1: जी
0: वार्ताकार आर डी शर्मा जी से।
1: जी।
2: ग्रामीण विकास में नवाचार की भूमिका एक नए मार्गदर्शक की है। नवाचार ने स्व

0: और तीव्र ग्रामीण विकास के लिए नई जमीन तैयार की है, नई चेतना का संचार किया है और दशकों से गतिहीन ग्रामीण जीवन को आशा और विश्वास का नया संबल प्रदान किया है। लेकिन पहले हम यह समझ लें कि नवाचार है क्या, ताकि हम भी इसमें भागीदार बन सकें, हम भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। सामान्य बोलचाल की भाषा में नवाचार को जुगाड़ तकनीक कहा जाता है। जब हम अपने आसपास की किसी समस्या को अलग चश्मे से देखते हैं, उसकी दिक्कतों को महसूस करते हैं और अपने सीमित साधनों के आधार पर कम से कम लागत में उन दिक्कतों का हल ढूंढते हैं, तो इसे नवाचार या जुगाड़ कहा जाता है। जब इन दिक्कतों को दूर करने का हमारा प्रयोग सफल हो जाता है, तो इसका प्रभाव किसी आविष्कार या नई खोज के प्रभाव से कम नहीं होता। इसी कारण इसे मित व्ययी अल्प लागत वाला इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। जुगाड़ या नवाचार का तरीका विशुद्ध स्वदेशी है। यह जन्मजात भारतीय प्रतिभा का कमाल है। इस तरीके का ईजाद हमने आपने किया है, जो गांव में रहते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, निरक्षर या कम पढ़े लिखे हैं, वे ही इस नई सोच और नई तकनीक के प्रवर्तक हैं। इसके लिए न तो किसी प्रयोगशाला की जरूरत है और न किसी प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की। जरूरत यदि है तो केवल जुनून की, उस जुनून की जिसके बारे में दुष्यंत कुमार ने कहा है, कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जुगाड़ या नवाचार की इस तकनीक की लोकप्रियता और इसकी भूमिका में पिछले दशक में जबरदस्त उछाल आया है। भारत के बाहर यानी विदेशों में इसे महत्वपूर्ण भारतीय आविष्कार या तकनीक के रूप में स्वीकार किया गया है। आर्थिक एवं व्यापारिक प्रबंधन की किताबों में इसे नई उपलब्धि के रूप में स्थान दिया गया है। प्रसिद्ध बीबीसी ने, जिसे आज भी गांव में विश्वास पूर्वक सुना जाता है, जुगाड़ को लेकर आधा घंटे का विशेष प्रसारण आयोजित किया। कुल मिलाकर जुगाड़ या नवाचार ने अपने को विकास की रणनीति में नई प्रभावी खोज के रूप में स्थापित किया है। यह गांव के उत्थान के लिए गांव के निवासियों के हौसले की उड़ान है। ग्रामीणों द्वारा अपनी दिक्कतों का सस्ता और सुगम हल ढूंढ लेना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है वाली कहावत को चरितार्थ करता है। अतः नवाचार या जुगाड़ की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तकनीक स्वप्रेरित है। यह हृदय की उर्वर जमीन में पैदा हुई है और इसने लाखों करोड़ों ग्रामीण बंधुओं के हृदय को छुआ है। ग्रामीण विकास का शायद ही कोई क्षेत्र या पहलू हो जो जुगाड़ के दायरे से बाहर है। उदाहरण के लिए, कुएं से जल भरने की दिक्कत के मद्देनजर घिरनी में स्टॉपर लगा दिया गया ताकि हाथ से छूटने पर भी बाल्टी पुनः नीचे नहीं गिर सके। जल को ठंडा रखने के लिए मिट्टी कूल बनाया गया है, जो वाटर फिल्टर और रेफ्रिजरेटर का काम करता है। इसकी सहायता से फल, सब्जी, दूध जैसी शीघ्र नाशवान वस्तुओं का संरक्षण किया जा सकता है। रोटी बनाने के लिए मिट्टी का तवा विकसित किया गया है। खेती किसानी में तो जुगाड़ तकनीक का कमाल देखते ही बनता है। चाहे वह प्याज की रोपनी हो या कोल्ड स्टोरेज के बिना भी घरेलू तरीके से प्याज का संरक्षण, चाहे वह खेत की जुताई हो या बीज बोने का काम, चाहे वह कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो या खेत से खरपतवार हटाने का काम, चाहे वह दूर के जलाशयों से जल ढोकर लाने का कार्य हो या मूंगफली जैसे मिट्टी के अंदर उगने वाले उत्पादों को खोद कर निकालने का कार्य, यानी खेती बाड़ी से संबंधित सभी क्रियाओं में ग्रामीण भारत के इन महान वैज्ञानिकों के आविष्कार व्यावहारिक तौर पर इतने शानदार और सस्ते हैं कि एक बारगी हैरानी होती है कि हमारे देश में अभावों के बीच भी प्रतिभाएं किस शानदार ढंग से नए तरीके से काम को अंजाम दे रही है। हमारे ग्रामीण बंधुओं को इन नवाचारों के बारे में जानने, सोचने, समझने और अनुभव के आधार पर कुछ नया कर गुजरने की जरूरत है। जुगाड़ तकनीक की सफलता की कहानियां समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार प्रसारणों में आती ही रहती हैं। ग्रामीण बंधुओं द्वारा इसे पढ़ने, इससे प्रेरित होने और अपने अंदर अपनी दिक्कतों के समाधान के प्रति इसी प्रकार का जुनून पैदा करने की जरूरत है। इन नवाचारों से गांव के विकास की, इनके कायाकल्प की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। गांव बदल रहे हैं, इनमें जीवन की गुणवत्ता सुधर रही है और ग्रामीण मानसिकता की धारणा ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। इस तरह के जितने नवाचार भारत में हो रहे हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं। इनकी भूमिका को देखते हुए हाल फिलहाल में इसे प्रोत्साहित करने और संगठित संस्थागत रूप देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF की स्थापना अहमदाबाद में की गई। यह नवाचारों का दस्तावेजीकरण करता है और उनका पेटेंट कराता है। अगर इसे लगता है कि किसी नवाचार में सुधार की जरूरत है तो अपनी राय भी देता है। फाउंडेशन उन प्रतिभाओं की तलाश करता है जिनके पास जमीनी स्तर पर नए ज्ञान कौशल संबंधी विचार हैं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की वित्तीय सहायता भी करता है। अभी इस फाउंडेशन के पास करीब 2.25 लाख तकनीक आइडियाज का डाटाबेस है, यानी भारत के कोने कोने से उनके पास अलग तरह की तकनीक और परंपरागत ज्ञान आधारित नवाचार पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा इन जुगाड़ आविष्कारकों को 2 हफ्ते के लिए राष्ट्रपति आवास बुलाया जाता है, जहां इनकी खोज का प्रदर्शन भी होता है और इनका सम्मान भी किया जाता है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंटर्नशिप के रूप में स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण विकास में नवाचार की पैठ और बढ़ सके। नवाचार की दृष्टि से भारत सरकार की कौशल विकास योजना भी महत्वपूर्ण है। जुगाड़ तकनीक के मामले में विभिन्न राज्यों की स्थिति अलग अलग है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में यह तकनीक अधिक लोकप्रिय है, जबकि बिहार इस दृष्टि से पीछे है। अतः बिहार के ग्रामीण बंधुओं से आग्रह है कि जुगाड़ तकनीक की सफलता की कहानियां पढ़ें, समझें, अपनाएं और अपने अंदर अपनी दिक्कतों को दूर करने का जुनून पैदा करने की प्रेरणा लें। कवि दुष्यंत कुमार के शब्दों में मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो जहां भी आग वह आग जलनी चाहिए।
1: जी, इतनी अच्छी जानकारी गांव के विकास में नवाचार की भूमिका इस विषय पर दे रहे थे वार्ताकार आरडी शर्मा को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने का समय हो चला है, तो हम लोग प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद सुनते हैं।
2: जी, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: नमस्कार, मैं हूं राजेश। सोमवार का दिन है, आ गया आपका दोस्त राजेश। कैसे हैं आप सब युवा साथियों? इन दिनों नए नए कोर्सेज की चर्चा कर रहा हूं, खास करके वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आज भी एक नया क्षेत्र है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और दूसरा कोर्स था आप सबों के लिए बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। आज परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। और ये आया है जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, बहुत ही उम्दा संस्थान, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। जी हाँ, ढेर सारी बातें होंगी। उससे पहले हम शेयर करते हैं अपना मोबाइल नंबर कि अगर आपको कोर्सेज के विषय में जानकारियां चाहिए, किसी भी टेक्निकल कोर्स के विषय में जानकारी चाहिए, चाहे हेल्थ सेक्टर से हो, मेडिकल के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो, नर्सिंग के लिए यानी बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, फार्मेसी के लिए हो, या फिर जर्नलिज्म के लिए, लॉ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर जो आपको जानकारियां चाहिए तो ये नंबर इस्तेमाल कीजिए। नंबर है 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121051, 1800121051, और एक वेबसाइट भी है जहां जा सकते हैं आप, www.gnsu.ac.in। हमने कहा, राजेश हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और करियर को और अपने जिंदगी को एक नई उड़ान दे दीजिए। कहते हैं ना कि बुनियाद मजबूत कीजिए। बहरहाल आज समय नहीं जाया करते हुए आप सबों को जानकारी देते हैं कि एक और नया कोर्स आया है वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ सेक्टर में एक मुकाम बनाना चाहते हैं। वो क्षेत्र है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में जानकारी हम दिलवाते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं, आइए इनसे ही हम इनकी जानकारी लेते हैं, इनका परिचय लेते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार।
0: प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है बुनियाद के आज के अंक में। पूरा बिहार और झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ चुका है युवाओं का। जी हाँ, उनके गार्जियन भी ये कार्यक्रम सुनते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानकारियां दें।
1: बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर वर्किंग ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली पे वो काम करते हैं। जब किसी पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी होता है, उस दौरान उनकी हार्ट और लंग्स को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो उस दौरान जब वो हार्ट और लंग्स जो कि अगर निष्क्रिय है तो पेशेंट कैन डाई, तो उसको मेंटेन करने के लिए देर इज अ लाइफ सपोर्ट मशीन, जिसको कहते हैं हार्ट लंग मशीन, उसको ऑपरेट करने का काम यह परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के जने करते हैं। यानी उस पर्टिकुलर ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट वो इस परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के हाथों में ही रहती है। तो इनका काम बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही ज्यादा, आप इसको कह सकते हैं कि निगरानी वाला महत्वपूर्ण कार्य है।
0: प्रोफेसर नीरज, पहली बार बिहार और झारखंड में बुनियाद कार्यक्रम में ये जो कोर्स है ना परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, ये जा रहा है लोगों के बीच। हाँ, लोगों को जानकारियां पहुंच रही है कि ये कोर्स भी होता है, और ये कोर्स गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में। और नीरज जी, आप ही के देख रेख में ये कोर्स चलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल होगा और अभी जो आपने आंसर दिया है उससे संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन वो कौतूहल अभी बना हुआ होगा। हम एक बार फिर चाहेंगे कि उस कौतूहल को आप शांत करें, और अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप सीधे सीधे फोन पर बात कर लें। 9431899002 और 1800121001। हाँ नीरज जी,
1: हाँ यह कोर्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स है, और ये कोर्स मेरे ख्याल से बिहार झारखंड में बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या तो ना के बराबर होंगे बिहार में, या बहुत कम ही होंगे जहां ये होता है। और ये कोर्स जैसे बताया कि इतना स्पेशलाइज्ड है कि बच्चे इसमें इतने स्किलफुल होते हैं कि एक पेशेंट के ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान उनको उस मशीन को ऑपरेट करके उन्हें जिंदा रखना होता है, ताकि उनके पूरे शरीर में, पेशेंट के शरीर में ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहे, ये इनका काम होता है।
0: वेल बहुत अच्छा। साथ साथ हमारे युवा साथियों और उनके माता पिता को प्रोफेसर साहब ये भी बताते चलिए कि ये कितने साल का कोर्स होता है।
1: ये 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है।
0: अच्छा, हमें लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये आप जैसे मालूम है कि हमें पेशेंट पे ये काम करना है, तो उसके लिए एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही जरूरी है। और श्रोताओं को ये बताना भी चाहूंगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी, हमारे पास अपना इन हाउस हॉस्पिटल भी है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 बेडेड हॉस्पिटल, जहां पर हमारे पास एन नंबर्स ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग टू ओपन हार्ट सर्जरीज, जिसमें कि हमारे यहां उनको अच्छा एक्सपोजर ही मिलने की पूरे चांसेस हैं। और चूंकि हमारे यहाँ अपने यहाँ एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट वैसे काम भी कर रहे हैं, उनकी देख रेख में ये लोग अच्छा सीख भी लेंगे।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, और मैं हूँ राजेश। हमारे साथ प्रोफेसर नीरज हैं, जो जानकारी दे रहे हैं एक नए कोर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में, जो इसी सत्र से गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास में शुरू हुआ है। वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, और आपको बताएं कि इससे पहले हमने 2 कोर्सेज की चर्चा की थी, जिसकी शुरुआत भी इसी सत्र से हुई है, और इसके लिए भी इंटरमीडिएट बायोलॉजी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और दूसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इन दोनों और इन तीनों अगर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को जोड़ लें मित्रों, तो बहुत ही उम्दा क्षेत्र है। आप चाहें तो अधिक जानकारियां ले सकते हैं इन नंबरों से, 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121001। प्रोफेसर नीरज, एक बात बताइए, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे आपके यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो आपका जैसा कि बताया कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, 1200 करीब बेड है वहाँ पर, तो हमें ये जानकारी चाहिए आपके माध्यम से पूरे बिहार और झारखंड में ले जाने के लिए कि क्या यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलता है, और मिलता है तो कब से और कितना।
1: जी, हमारे बच्चों की वहाँ पर रोस्टर लगती है, हर महीने वाइज, मंथली वाइज उनकी वो रोस्टर बनती है, और उसके हिसाब से उनकी वहाँ पर पोस्टिंग लगती है ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स, 3 साल की पढ़ाई के दौरान भी, और जब 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं उसमें भी उनकी रोटेटरी इंटर्नशिप की रोस्टर बनती है, फिर वहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटर्नशिप करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा जान करके कि जो इस क्षेत्र में पहले के दूसरे कोर्सेज हैं वहाँ के बच्चे ड्यूटी करते हैं और वहाँ अपनी काबिलियत प्रूफ करते हैं, और अब ये जो 3 कोर्स हम बता रहे हैं लगातार, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज और बैचलर ऑफ साइंस इन

0: कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, क्या एक बात बताइए कि अगर यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर अच्छा करें तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसमें क्या आप उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी नौकरी लगती है, अपने बच्चों को लेते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, ये हमारी तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि हमारे और भी पिछले कोर्सेज, पुराने कोर्सेज के बहुत सारे बच्चे हमारे खुद के हॉस्पिटल में एब्जॉर्ब हुए भी हैं और वो हमारे परस्पर संपर्क में भी रहते हैं। उनसे हम अपने बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते रहते हैं, उनको कई दफ़ा हम एलुमनाई लेक्चर भी कराते हैं, करियर काउंसलिंग भी उनसे कराते हैं। तो ये तो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस पे हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज भी करते हैं।
0: हम चाहेंगे अब आपसे कि पूरा बिहार और झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा सुन रहा है हमारे बुनियाद कार्यक्रम को, वर्षों हो गए इस कार्यक्रम को लेकर आते आते बुनियाद को, और इस पर लोग भरोसा रखते हैं, युवा साथी भरोसा रखते हैं, गार्जियन भरोसा रखते हैं और भरोसा रखते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार पर भी। हम आपसे प्रोफेसर नीरज ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स बोले तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में कैसे बच्चे आ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सीटें हैं, ब्ला ब्ला जितनी भी जानकारियां हैं आप दे दीजिए।
1: ये 10 इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ 45% मार्क्स इन ऑल टुगेदर। और हमारे यहाँ सीट इसकी है 10 हमने रखी है अभी, और आगे भविष्य में देखेंगे हम इसको बढ़ाना होगा, पर फिलहाल हमने अभी 10 सीट्स रखी है इनकी। और ये जैसे मैंने पहले बताया 4 साल का कोर्स है, 3 साल की पढ़ाई होगी, 1 साल का इंटर्नशिप होगा। और यह कोर्स कराने के लिए हमारे पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल विद आर पोस्टिंग्स डन इन NMCS।
0: इस कोर्स को करने के बाद रोजगार क्या क्या क्या डिमांड क्या है, क्या डिमांड है इस कोर्स की?
1: ये जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ती जा रही है, अब जब ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ेगी तो पेशेंट्स के हार्ट्स एंड लंग्स को निष्क्रिय किया जाएगा, उस दौरान परफ्यूजनिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, हर जगह पड़ती है। तो इसलिए इस कोर्स की डिमांड भी धीरे धीरे वैसे ही बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ भी अब स्पेशलाइज्ड ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो वहाँ भी परफ्यूजनिस्ट अपॉइंट किए जा रहे हैं, बहाल किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल का कहना ही नहीं, आप बहुत सारे आपने भी जानते होंगे कि हर जगह जगह सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल खुल रहे हैं जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और एक और ऑप्शन होता है विदेशों में करियर का ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया सुपर स्पेशलाइज्ड ये कोर्स है तो इनकी डिमांड बाहर भी बहुत ज़्यादा है, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे इंडिया में पढ़ के बाहर भी अब्रॉड सेटल हो चुके हैं, तो वहाँ भी इनके पास चांसेस हैं। और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर MSc मास्टर्स करके ये टीचिंग में भी आ सकते हैं।
0: अच्छा नीरज जी, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जो बच्चे रोजगार नहीं करना चाहें या अपना क्लिनिक खोल कर बैठे हैं तो क्या उन्हें कॉल पर भी तो बुलाया जाता होगा?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल पर बुलाया जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं कि उनका दे हैव द टाई अप विद और कॉन्टैक्ट विद 10 or more than 10 or 20 हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ जब कभी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो यार इनको ऑन कॉल पे बुलाते हैं ऐसे लोगों को, ये वहाँ जाके हर जगह से अपना काम करके दे कैन चार्ज।
0: बहुत ही उम्दा कोर्स है, हाँ बहुत ही, हाँ पैसा कमाया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है, लोगों की सेवा की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में अगर आप दाखिला लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ध्यान रखिए, जैसा कि प्रोफेसर नीरज ने बताया है कि सत्र से सिर्फ 10 सीटें ही हैं, इसलिए देर नहीं कीजिए। थैंक यू डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मिनट, आपसे एक जानकारी आपने दी, आपके सामने ही लोगों को बोल दें कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज में भी मात्र 30-30 सीट ही है। अगर उधर की तरफ रुक करते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी, हाँ प्रयास करना होगा। और अब थैंक यू प्रोफेसर नीरज, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको जब भी बुलाएंगे आप आएंगे। समय खत्म हो रहा है, प्रोफेशनल पढ़ाई करने की हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बीएड स्पेशल एजुकेशन की भी पिछले दिनों हम बहुत चर्चा कर रहे थे, वहाँ भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। फिलहाल नोट करें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का ये नंबर जिस पर आप और अधिक जानकारियाँ

0: दे सकते हैं। नंबर है 9431899002 9431899002। तो राजेश को दीजिए इजाजत। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: जी, प्रायोजित कार्यक्रम के बाद अब हम पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को सुन लेते हैं।
3: जी,

0: AIR at 90.
1: जी, एक बार फिर से सभी श्रोता भाइयों का कार्यक्रम में स्वागत है। अनु भाई, आज विश्व दुग्ध दिवस भी है और हमारे किसान पशुपालक भी पशुधन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो बाह्य ध्वनांकन पर आधारित दुग्ध विक्रेता संतोष यादव जी से बातचीत हुई है, वो सुनते हैं। और संकलन करता है अवनीत कुमार और प्रस्तुत करता है श्री अतुल कुमार प्रियदर्शन
2: जी। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज विश्व दुग्ध दिवस है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध में कैल्शियम, फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। आज विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर मैं एक पशुपालक भाई के पास आया हूँ जो पशुपालन करते हैं और इसके साथ साथ वे दुग्ध व्यवसायी भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वे किस प्रकार अपने पशुधन से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ?
3: संतोष यादव।
2: आपके पास कितने पशु अभी हैं?
3: 6 भैंस है, 4 गाय है, 2 बकरी है
2: जी। उनमें कितना दूध देता है?
3: 1 देता है 10 किलो, 1 देता है 12 किलो, 1 देता है 15 किलो, 1 8 किलो।
2: अच्छा अच्छा आप जो दूध बेचते हैं वो घर घर पहुंचाकर बेचते हैं या फिर बाजार में डायरेक्ट बेचते हैं?
3: घर पे, सबको घर पे जा जा करके देते हैं,
2: बाजार में नहीं जाते हैं ना?
3: नहीं, बाजार में दूध नहीं देते हैं, घर घर सबको जहाँ जहाँ घर जहाँ जहाँ लग गया वहाँ वहाँ दे देते हैं दूध।
2: पशुओं की जो आप देखभाल करते हैं उसके लिए आप स्टाफ भी रखे हैं या फिर आप अकेले करते हैं?
3: हम अकेले करते हैं, अपने से ही
2: जी। जी, आप जो ये दूध का धंधा कर रहे हैं ये आपका पुश्तैनी धंधा है या फिर अभी नए नए इसका शुरुआत किए हैं?
3: मेरा पुश्तैनी धंधा है, पुश्तैनी से ही करते हुए आ रहे हैं, मेरे बाप दादे किया है
2: जी। जी,
3: मेरा पिताजी भी करता था, मेरा दादा भी करता था, हम भी कर रहे हैं इस धंधा को
2: जी। जी, अच्छा आप गाय और भैंस के अलावा बकरी का भी पालन करते हैं क्या?
3: हाँ, गाय भैंस और बकरी भी पालन करते हैं। गाय भैंस दूध देती है, बकरी दूध नहीं देती है, बस ये इतने सा बात है और कोई बात नहीं। बात नहीं,
2: यानी अच्छी खासी संख्या है मवेशियों के आपके पास
3: जी।
2: अच्छा, आप पशुओं को क्या क्या खाना खिलाते हैं उन्हें?
3: लारो कुट्टी खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, घाटा खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, खल्ली खिलाते हैं, बेसन पिलाते हैं चना का
2: जी,
3: गुड़ खिलाते हैं, मसूर का दाल खिलाते हैं।
2: पशुपालन के अलावा आप खेती भी करते हैं क्या? और आपके पास खेत भी है क्या?
3: नहीं, मेरे पास खेत नहीं है, सब खरीद करके खिलाते हैं, टोटल चीज जितना सब खरीद के खिलाते हैं।
2: अच्छा अच्छा आप दूध जो बेचते हैं ये साइकिल से बेचते हैं या फिर मोटरसाइकिल से बेचते हैं?
3: साइकिल से ही बेचते हैं, गुरु गुरु के साइकिल से बेचते हैं
2: जी।
3: हम लोकल ही एरिया में ही दूध बेचते हैं,

0: साइकिल का ही प्रयोग करते हैं, क्या साइकिल ही मेरा लोकल में कहाँ जाएंगे,
1: जी।
0: रास्ता सही नहीं है।
1: अच्छा संतोष जी, आप अपने पशुओं को टीका लगाने के लिए कहाँ जाते हैं?
0: हम लोग को टीका कराने के लिए घर पे ही आता है।
1: जी।
0: हाँ, जैसे कि आता है घर पे, सब घर सुझा देता है घर पाकर।
1: संतोष जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण अपने घर पर ही करा लेते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके अपने पशुओं में दिखे तो इसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में अपने आसपास के दूसरे भी लोगों को जानकारी दें ताकि वे भी निशुल्क सरकारी अस्पताल का लाभ उठाएं और अपने पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा।
2: जी,
1: ऐसा देखा जाता है कि बकरियों में अधिकतर डायरिया की शिकायत हो जाती है और इस वजह से ऐसा भी नौबत आता है कि उन पर दवाई का असर नहीं होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है?
0: हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कठ बकरी मेरा भी मर गया है,
1: जी
0: दवा खिलाने पर भी असर को असर नहीं किया।
1: जी तो उनसे बचने के लिए आपके पास कोई उपाय है?
0: उसके बचने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। जो दवा खिला देना, आप क्या उपाय करेंगे, नहीं बचाते।
1: जी, ठीक है संतोष जी, मैं देख रहा हूँ कि इस समय आप काफ़ी व्यस्त हैं, फिर भी आपने हमारे किसान भाई के लिए बहुत ही कीमती समय निकाला, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद भैया।
1: जी आरो बहन,
3: जी
1: अब हम लोग अपने किसान भाइयों को कुछ मौसम सूचना भी दे देते हैं
3: बिल्कुल
1: ताकि वे अच्छी तरह से कृषि खेती बाड़ी कर सके।
3: बिल्कुल। तो मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाली अवधि में जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, जिसकी जो रफ्तार है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है, एवं इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। कुछ समसामयिक सुझाव भी है अन्नू भाई, जैसे कि सामान्य सलाह यह है कि पूर्वानुमानित अवधि में वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी तथा दोनों को सुखाने के कार्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
1: जी।
3: कीटनाशकों का छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें तथा धान के लिए समसामयिक सुझाव यह है कि लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबोर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा VPT 5204 एवं राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी स्थापित करें। स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सरी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.50 मीटर तथा लंबाई सुविधा अनुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें और बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें।
1: बिल्कुल।
3: मक्का के लिए समसामयिक सुझाव यह है कि खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे कि स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, 11, गंगा 11 हैं।
1: बिल्कुल।
3: जी।
1: और श्रोताओं, जो हमारे पशुपालन भाई है वो गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है उन्हें, साथ ही सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पूर्व 2 घंटा पानी में फुला लें और उसमें 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक मिलाकर चारा दाना में मिलाकर अगर देंगे पशु को तो वह ज़्यादा कारगर होगा। इसके साथ ही श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। कल कार्यक्रम में हम लोग फिर से इसी समय उपस्थित होंगे, कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। इस समय विदा दें, सबको अन्नों का नमस्कार
3: और सभी को आरू का भी नमस्कार।

सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में 132 छात्रों को दी डिग्रियां। तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन के साथ समाज सेवा की अपील। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा। जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कल्याण विभाग की समीक्षा। राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और रांची, खूंटी, सिमडेगा समेत कई जिलों में 7 जून तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट। वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। एक रिपोर्ट।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्षों ने लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और नए अवसर भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे मार दे।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के 132 MBBS छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई चिकित्सा तकनीकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने छात्रों से तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए मरीजों की बेहतर सेवा करने का आह्वान किया।
3: चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। एक चिकित्सक के हाथों में केवल उपचार की क्षमता नहीं होती बल्कि रोगी को आशा, विश्वास और जीवन देने की शक्ति भी होती है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसे केवल दवा नहीं बल्कि संवेदना और भरोसा भी चाहिए होता है।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कोडरमा के हजारों छात्र छात्राओं को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हस्तांतरित कर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबद्ध किए जाने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक बार फिर अवगत कराया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने यह जानकारी दी और विश्वास व्यक्त किया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री सकारात्मक पहल करेंगे। साथ ही राज्य में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनहित से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @ AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रावासों की स्थिति और आश्रम स्कूलों के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने तथा कल्याण विभाग के विद्यालयों में SIR और जनगणना से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टा वितरण अभियान में तेजी लाने, हॉस्टलों के निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने तथा कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने नर्सिंग स्कूलों में युवकों की भागीदारी बढ़ाने, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्रस्ताव तैयार करने और कल्याण विभाग के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रांची के ओरमांझी क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक की लागत से कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें डीप बोरिंग, स्नानागार और शौचालय, सामुदायिक भवन कार्य शामिल है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और लोगों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में दुलाडी चारेडी आदिवासी टोला सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व ग्रामीणों से किए गए सड़क निर्माण के वादे को पूरा किया जा रहा है और क्षेत्र के हर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण से हजारों ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा तथा आदिवासी बहुल गांव मुख्य सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेंगे। रिम्स राजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले रिम्स के नर्सिंग स्टाफ ने निदेशक कार्यालय का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। बकाया वेतन भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी,

0: जारी किया है। इसके साथ ही वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। रांची जिला वुशु एसोसिएशन और झारखंड वुशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बरसा मुंडा स्टेडियम में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वुशु प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ किया गया। शिविर में रांची जिले के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में 132 छात्रों को दी डिग्रियां। तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन के साथ समाज सेवा की अपील। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा। जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कल्याण विभाग की समीक्षा। राज्य में साइकिल उद्योग स्थापित करने की योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और रांची खूंटी सिमडेगा समेत कई जिलों में 7 जून तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट। वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत। कलाकार हैं संजीत कुमार सिंह। इनका गाया सुनिए ये कृषि गीत।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: अब सुनिए ये कृषि गीत। कलाकार हैं संजीत कुमार सिंह।

आप सुन रहे थे लोकगीत कलाकार थे संजीत कुमार सिंह, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज जिन 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई है उनमें से 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। गौरतलब है कि डॉ. कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस और सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की भी समीक्षा बैठक की।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में सुनिश्चित रूप से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की तकनीकी माध्यम से निगरानी करने और बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभाग की सभी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। समाचार कक्ष से नंदिनी।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: इस अवसर पर पटना के कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
5: हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों। हर व्यक्ति अपने जमीन के 1/4 में कम से कम प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आह्वान किया है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर पुनर्परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। कल ही राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10-15% तक की बढ़ोतरी की है। सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए आमजनों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सभी खराब पड़े चापाकलों को 15 जून तक चालू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पेयजल संकट के समाधान और चापाकलों की मरम्मती को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री अमृत ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में संवेदनशील मामलों को देखते हुए जिलाधिकारियों को विशेष रूप से चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्ञान भारत मिशन के तहत चल रहे सर्वेक्षण की प्रगति की भी समीक्षा की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। JEE एडवांस 2026 में कयाची के शुभम कुमार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, अभिभावक और कड़ी मेहनत को दिया है।
7: टॉप करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हो, जितना भी हमारी पोटेंशियल है, उसको एटलीस्ट 80-90% रिफ्लेक्ट करना अपने फाइनल पेपर में। आई थिंक वही काफी होता है, बिकॉज अगर अपने आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम जितना कर सकते हैं हमने अपनी पूरी चीज जान लगा दी हो। तो उसके लिए तो आई थिंक अपना विल पावर पूरा होना चाहिए कि अगर करना है तो करना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और कया के सांसद जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद और पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की खबर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
8: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की 21 जून को पटना में बैठक होगी। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर परिषद की औपचारिक मुहर लगना है।
9: राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 25 जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।
0: नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में रवि संगम की पुस्तक रामायण परिपथ बिहार का लोकार्पण किया। इस शोध पुस्तक में प्रभु श्री राम की बिहार यात्रा से जुड़े स्थलों का जिक्र है। इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार, राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में कल से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार आज कटिहार के विकास भवन में 20 सूत्री और आपदा की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत अनुदान राशि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ही दी जाए। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया। बिहार के एथलीट पीयूष राज ने 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चीन के हांगकांग में आयोजित 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य के रूप में पीयूष ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीयूष राज की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सोनपुर के रितेश रंजन ने स्वर्ण पदक जीता है। पटना में संपन्न राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शेखपुरा के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: और इस गीत के बाद
11: छाया टोपी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
3: नवादा जिले में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस चरण के तहत मकानों की गणना, मकान सूचीकरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियां एकत्र की गई है। इससे पहले ऑनलाइन स्व गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज की। जिले के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिदिन अधिकतम 8,000 पर्यटकों के प्रवेश की सीमा निर्धारित कर दी है, साथ ही प्रवेश शुल्क में भी वृद्धि की गई है। सोमवार से शुक्रवार तक 10 रुपए की जगह अब 100 रुपए तथा शनिवार और रविवार को 20 रुपए की जगह 200 रुपए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड की पश्चिमी पंचायत की मुखिया सुभद्रा सिंह को पंचायत स्तर पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 3 जून को नई दिल्ली में आधारभूत संरचना विकास, जल संरक्षण, पौधारोपण तथा जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि से पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुखिया सुभद्रा सिंह ने कहा, यह सम्मान पूरे पंचायत परिवार और पंचायत वासियों की उपलब्धि है।
4: हमको बहुत खुशी है कि महिला मुखिया के सरकार ने यह सम्मान दिया कि हमको दिल्ली बुलाया गया, इसमें हम और अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं।
3: जिले में किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी अभियान के तहत पंजीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी अजीत प्रकाश ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,86,000 लाभार्थी हैं, जिनमें से अब तक 1,00,000 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। यह कुल लाभार्थियों का 54.23% है। उन्होंने बताया कि फार्मर आईडी बनाने के मामले में नवादा जिला राज्य में 5वें स्थान पर है। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद बीज पर अनुदान तथा फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इधर जिले में खरीफ फसल की बुआई को लेकर किसान धान का बिचड़ा डालने के लिए खेत तैयार करने में जुटे हैं। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 8,500 हेक्टेयर क्षेत्र में बिचड़ा डालने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इधर रोहिणी नक्षत्र के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है, जिससे किसानों ने खेतों की जुताई का कार्य तेज कर दिया है। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिले में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस पहल को सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है। श्री सुमन ने कहा कि सबका सम्मान सबका आसान हो कार्यक्रम के तहत सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पूर्व में सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार तथा शिकायत निवारण अधिनियम के माध्यम से समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिससे आम लोग अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान करा सकेंगे। नवादा सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की गई। सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
5: प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक अच्छा संवाद हुआ और समीक्षा हुई केंद्र और बिहार सरकार की सभी योजनाओं की और नवादा के विकास में अच्छा योगदान आज के बैठक में रहेगा।
3: नवादा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। मई माह में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 45
6: मीडियम वेव 205.76 मीटर पर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं चंद्रशेखर। इनकी आवाज में सुनिए ये भजन।

आकाशवाणी एट 90। चंद्रशेखर की आवाज में सुनिए ये भजन।

सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुन रहे थे। कलाकार थे चंद्रशेखर। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। फिल्म दामिनी का ये गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुनिए। संगीत रचना है शिव हरि का, फिल्म है डर, आवाज उदित नारायण की।

सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। और खेल खड़ी के नए अंक के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं मैं मिलिंद गुंजन। स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समसामयिक खेल गतिविधियां, खेल जगत की रोचक खबरें। स्पोर्ट्स कॉर्नर में आज हम बात करेंगे आईपीएल सीजन 19 की। और कार्यक्रम के आखिरी स्तंभ यानी हमारे सवाल आपके जवाब में होगी आप सबों के खेल ज्ञान की परीक्षा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेल जगत के ताजा तरीन हलचलों से। हमारे नियमित स्तंभ खेल गतिविधियां में

और खेल गतिविधि की शुरुआत करते हैं आईपीएल सीजन 19 की खबर से। मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के बाद रविवार को बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स तीसरी बार वो ऐसी टीम बन गई जिसने लगातार दो बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने का सम्मान मिला है। बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस पर 5 विकेट से जीत दर्ज की और ट्रॉफी भी अपने नाम कर लिया। खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जैसे ही विराट कोहली ने विजयी छक्का जड़ा तो प्रशंसक खुशी से झूम उठे। जीत की नींव बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, रसिक सलाम ने रखी। इनके कसी गेंदबाजी के कारण गुजरात 20 ओवर में 155 रन नहीं बना पाई। बाद में चेज मास्टर विराट ने 42 गेंद पर नाबाद 75 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। उन्होंने आईपीएल नॉकआउट में 10 वर्ष के बाद अर्धशतक लगाया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में। अब खेल की अन्य खबरों की बात कर लेते हैं, उसमें बात सबसे पहले बैडमिंटन की। बैडमिंटन में भारत के लिए अच्छी खबर है। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पूर्व विश्व नंबर एक भारतीय जोड़ी ने आखिरकार 2 साल का खिताब सूखा खत्म कर लिया। उन्होंने रविवार को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल के फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद सोहिबुल की जोड़ी को हराकर टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन इस भारतीय जोड़ी ने 2 वर्षों में पहला खिताब जीता है। यह उनका करियर का कुल 9वां BWF विश्व टूर खिताब है। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती गेम गंवा दिया लेकिन उसके बाद शानदार वापसी करते हुए रोमांचक मुकाबले में 18-21, 21-17, 21-16 से जीत दर्ज करते हुए सुपर 750 स्तर का अपना तीसरा खिताब भी हासिल कर लिया। सात्विक और चिराग ने पिछली बार 2024 में थाईलैंड ओपन का खिताब अपने नाम किया था। तब से वे 4 बार फाइनल में पहुंचे थे पर हर बार उपविजेता से ही संतोष करना पड़ता था। कड़े मुकाबले के वाले इस मुकाबले में पहला गेम पिछड़ने के बावजूद भारतीय जोड़ी ने अपने खेल की गति बढ़ाई और लंबी रैलियों से दबदबा बनाते विश्व नंबर 3 इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ मुकाबले का रुख पलट दिया। उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के मौजूदा विश्व चैंपियन और शीर्षवर्ता प्राप्त किम योन हो तथा सियो सेंग जे की जोड़ी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर काबिज इस भारतीय जोड़ी के लिए यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही क्योंकि वे सिंगापुर ओपन में पुरुष युगल खिताब जीतने वाले पहले

शुभ रहा। मैं खिताब उस बच्चे और अपने परिवार को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। ये शब्द थे सात्विक साईराज रांकी रेड्डी के। इधर बात कर लेते हैं भारत ए की टीम की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका में होने वाले तीन देशों की सीरीज के लिए भारत ए टीम में चोटिल रियान पराग की जगह ले ली है। भारतीय श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच होने वाली तीन देशों की सीरीज 9 जून से शुरू होगी। टीम इस प्रकार है, तिलक वर्मा कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश सेडगे, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, दोनों विकेटकीपर विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान और अनुकूल राय। अब बात

है। 65 किलोग्राम वर्ग में सुजीत कलकल ने विशाल कालीरमन को 2-0 से पराजित कर एशियाई खेलों का टिकट कटा लिया, जबकि सागर जागलान ने 74 किलोग्राम वर्ग के रोमांचक फाइनल में जयदीप को 8-6 से हराकर भारतीय टीम में जगह पाई है। फ्री स्टाइल टीम इस प्रकार है, अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जागलान 74 किलोग्राम, मुकुल दहिया 86 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत राहुल 125 किलोग्राम, ग्रीको रोमन सुमित 60 किलोग्राम। ये है टीम और एशियाई खेल के लिए। और अब बात एक बार फिर से कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम जो एशियाड के लिए चुने गए हैं 30 खिलाड़ी उसकी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC को 30 पुरुष संभावित खिलाड़ियों की सूची सौंप दी है। इसमें IPL स्टार वैभव सूर्यवंशी का नाम है, लेकिन T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव के अलावा टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। यह पहले से ही तय था कि BCCI को 2 अलग अलग T20 टीमें चुननी होंगी, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की घरेलू सफेद गेंद की सीरीज का कुछ हिस्सा इसके कार्यक्रम के साथ पड़ रहा है। एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आईएचई नागोया में होंगे। दूसरी ओर वेस्टइंडीज सीरीज में 27 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच 8 सफेद गेंद के मैच, 3 वनडे, 5 T20 मैच खेले जाएंगे। उम्मीद है कि गिल वनडे टीम की कप्तानी करेंगे, इसलिए उन्हें एशियाई खेलों के लिए टीम में नहीं चुना गया। कुछ खिलाड़ी वनडे और T20 दोनों टीम में हैं, लेकिन एशियाई खेलों में पुरुषों की स्पर्धा 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच होगी, जिसके चलते चयनकर्ताओं को बड़ा पूल बनाना पड़ा है। एशियाई खेलों में कप्तानी के दावेदारों में श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और तिलक वर्मा भी शामिल हैं। उम्मीद है कि हर्षित राणा तब तक फिट हो सकते हैं, उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह के साथ सूची में रखा गया है। स्पिनरों में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे को भी सूची में जगह मिली है, पर इनमें से 2 के ही चुने जाने की उम्मीद है। बाकी 2 वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेंगे, पर सूची में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शामिल हैं, जिनका प्रदर्शन इतना अच्छा इस IPL में नहीं रहा है। एशियाड के लिए चुने गए 30 खिलाड़ी इस प्रकार है, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई, सहबाज अहमद, शिवम दुबे, विपराज निगम, हर्षित राणा, यश ठाकुर व वाशिंगटन सुंदर। यह 30 खिलाड़ियों की सूची है जो एशियाड को सौंपी गई है ओलंपिक एसोसिएशन को। अब बात कर लेते हैं मनु भाकर की। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सम्राट राणा ने शनिवार को विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 483.6 का स्कोर किया। चीन के कियानुक्सन याओ और काई हू ने 483.9 करके स्वर्ण पदक जीता है, जबकि चीन के ही सेन सियाओ और यू सुआई हांग ने कांस्य पदक से संतोष किया। इस स्पर्धा में सुरुचि इंदर सिंह और श्रवण कुमार ने 575 के स्कोर से 10वां स्थान हासिल किया। 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में इलावेनिल क्लावेरवन और अर्जुन बबूता 14वें स्थान पर है, जबकि आर्या बोस और तुषार साहू माने 16वें स्थान पर रहे। और अब बात फुटबॉल के मैदान से। अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कॉर्लिनी ने लगातार बढ़ती चोट की चिंताओं के बीच स्पष्ट किया है कि कप्तान लियोनेल मेसी समेत ज्यादातर मौजूदा विश्व चैंपियन खिलाड़ी 2026 फीफा विश्व कप के लिए टीम में हैं। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगा। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने गुरुवार को 26 सदस्य विश्व कप टीम की घोषणा की, जिसमें 39 वर्ष के होने जा रहे लियोनेल मेसी सबसे बड़े आकर्षण है। इसमें 17 खिलाड़ी पिछले विश्व विजेता टीम के शामिल किए गए हैं। विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए विश्व चैंपियन डी गुकेस को गुरुवार को करारी शिकस्त दी। इसे गुकेस अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर पहुंच गए हैं फिलहाल। वहीं आर प्रज्ञानंदा ने विसेंट कीमर को आर्मगेडोन टाई ब्रेक में हराकर दूसरा स्थान बरकरार रखा है। 7 बार के नॉर्वे शतरंज चैंपियन कार्लसन जी से 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये तो थी खेल जगत के ताजा तरीन खबरें हमारे मित्र स्तंभ खेल गतिविधियां में, और श्रोताओं हम को चलते अपने अगले स्तंभ खेल जगत के रोचक खबरों की तरफ।

खेल जगत के रोचक खबरों में श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट ACSU ने आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों द्वारा स्मार्ट चश्मों के इस्तेमाल पर अब रोक लगा दी है। बोर्ड ने स्पष्ट तौर

पर कहा है कि इन उपकरणों में लाइव स्ट्रीमिंग, संदेश भेजने और मोबाइल डाटा या वाईफाई के जरिए ऑडियो वीडियो कॉल जैसी सुविधाएं होती हैं, जिससे खतरा हो सकता है। खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र में स्मार्ट चश्मे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। नियम तोड़ने पर जुर्माना व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाल में राजस्थान के रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल के इस्तेमाल करने पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। और अब बात अमिताभ बच्चन की। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी के विषय में लिखा है अपने सोशल साइट्स पर कि 15 वर्ष की उम्र में सूर्यवंशी एक अद्भुत सूर्य हैं। इस उम्र में हम तो ठीक से कंचे और गली क्रिकेट भी नहीं खेल पाते थे। जी हाँ, ये शब्द हैं, ये अल्फाज हैं महान कलाकार अमिताभ बच्चन के। और इस युवा क्रिकेटर के विषय में वैभव सूर्यवंशी के विषय में उन्होंने लिखा है। साथ ही वैभव सूर्यवंशी के पिता ने इस जीत को देशवासियों को समर्पित किया है और सबों के प्रति आभार जताया है। ये तो थी खेल जगत की रोचक खबरें और श्रोताओं, हम को चलते अपने अगले स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में।

स्पोर्ट्स कॉर्नर में श्रोताओं आपको बहुत बहुत स्वागत है। जो स्पोर्ट्स कॉर्नर में हम बात करेंगे आईपीएल सीजन 19 अब पूरा हो चुका है, नया विजेता मिल चुका है। नया विजेता कौन है ये आप तमाम श्रोता इस बात को जानते हैं कि आरसीबी यानी विराट कोहली की टीम ने एक बार फिर से खिताब अपने नाम कर दिया और आईपीएल के फाइनल में उन्होंने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया है। अब इस मुकाबले की बात करेंगे इस पूरे आईपीएल में किस खिलाड़ी के सर पर ऑरेंज कैप सजा, किस खिलाड़ी के सर पर पर्पल कैप सजा, साथ ही साथ इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला और भी तमाम चीजें कि किन किन खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी इस बार आईपीएल में। करीब 1.25 लाख दर्शकों के खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब विराट कोहली ने छक्का लगाया तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम मैदान में दौड़ पड़ी। पिछले साल टीम की पहली खिताबी जीत में भी विराट ने सर्वाधिक 43 रन बनाए थे। इस बार भी उनकी 75 रन के नाबाद पारी से बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले बेंगलुरु के गेंदबाज ने गुजरात टाइटंस की टीम पर शिकंजा कस लिया था और केवल 155 रन पर ही उन्हें रोक दिया था। छोटे स्कोर का पीछा करते हुए बेंगलुरु को वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने टीम की तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश की। दोनों ने 27 गेंदों पर 62 रन की साझेदारी करके मेजबान टीम पर दबाव बना दिया था। हालांकि अगले ही ओवर में देवदत्त 1 रन पर लौट गए। उसके बाद कप्तान रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या भी बड़ी पारी नहीं खेल पाई। फिर टीम डेविड के साथ कोहली ने 41 रन जोड़कर टीम को लक्ष्य के करीब तक पहुंचाया। इस दौरान कोहली ने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के लिए 25 गेंदें ली। उन्होंने राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ 2018 में 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। अंत में अर्धशतक की गेंद पर उन्होंने टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इससे पहले बेंगलुरु के गेंदबाजों ने गुजरात टीम की ऐसी गिल्लियां उखेड़ी कि पूरे मैच में वे बाउंड्री के लिए तरसते नजर आए। मध्य ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाज ने लगातार 40 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं दी। गेंदबाजों के चक्रव्यूह को गुजरात के बल्लेबाज भेद नहीं पाए। जैकब डफी ने पहले ही ओवर में 13 रन दे दिए थे जिससे गुजरात को अच्छी शुरुआत मिल गई, पर फिर रजत पाटीदार ने हेजलवुड और भुवनेश्वर की गेंदबाजी पर लगाकर गुजरात को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। लगातार 2 आईपीएल खिताब जीतकर रजत पाटीदार अब रोहित शर्मा मुंबई और एमएस धोनी चेन्नई के क्लब में शामिल हो गए हैं। साथ ही बेंगलुरु ने फाइनल में 3.3 ओवर में सबसे तेज 50 रन का आंकड़ा छूकर चेन्नई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेन्नई ने 2023 में इसी मैदान पर 4 ओवर में 50 रन बनाए थे। कुछ और रिकॉर्ड आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं कि 2008 में हर 100 गेंद पर 125 रन बनते थे। 2026 में यह आंकड़ा करीब 165 रन पहुंच गया है। 19 साल में बल्लेबाजी की रफ्तार 32% से ज्यादा तेज हो गई है। 2009 में एक बार 200 प्लस के रन बने और 2026 में 64 बार यानी 64 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 2012 में पहली बार एक मैच में 200 प्लस रन चेस हुए। 2026 में 16 बार ऐसा कारनामा हुआ। 2026 में 220 प्लस 9 बार चेज हुए, जबकि पिछले 18 सीजन में कुल मिलाकर सिर्फ 5 बार ही ऐसा हो पाया था। आईपीएल में जो पहली बार हुआ इस बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। पावर प्ले में सभी टीमों को मिलाकर औसत रन रेट 10 के पार ही रहा। सभी 10 टीमों की ओर से कम एक बल्लेबाज ने शतक जड़ा। गिल सुदर्शन पहली ओपनिंग जोड़ी जिसने लगातार 2 सीजन 2025 और 26 में 600 प्लस का स्कोर बनाया। किसी खिलाड़ी ने एक सीजन में 70 प्लस छक्के जड़े। वैभव सूर्यवंशी 72 छक्के उन्होंने 14 साल बाद क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 बार शतक के बावजूद टीम हार गई। शुरुआती 3 ओवरों में रन गति 9.52 रही, पहली बार इतनी ज्यादा। ये कुछ रिकॉर्ड आंकड़े जो आईपीएल में पहली बार हुए। अब बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप की। ऑरेंज कैप की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी, जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स के 776 रन इनके खाते में और ऑरेंज कैप इनके ठीक पीछे रहे शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस के फाइनल तक पहुंचे वो और 732 रन बनाए। तीसरे नंबर पर गुजरात के ही साई सुदर्शन रहे, 722 रन उन्होंने बनाए, कप्तान से 10 रन कम। विराट कोहली बेंगलुरु के चौथे नंबर पर रहे, 675 रन बनाकर इस खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया कि T20 भी अभी बहुत जान बाकी। विराट कोहली में भी काफी लंबा क्रिकेट था लेकिन अब तो वो संन्यास ले चुके हैं T20 से, लेकिन आईपीएल में शानदार प्रदर्शन से उन्होंने जता दिया कि विराट कोहली तो विराट कोहली ही हैं। इस पर चर्चा करेंगे फिलहाल और अगले बल्लेबाज की बात कर लेते हैं। क्लासेन जो हैदराबाद के थे सनराइजर्स, 624 रन उन्होंने बनाए थे और ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद के ही 602 रन, उन्होंने भी 600 का आंकड़ा पार कर लिया। और अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप की।
पर्पल कैप कैगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस के 29 विकेट उनके खाते में और पर्पल कैप उनके खाते में। भुवनेश्वर कुमार जो बेंगलुरु के हैं, एक विकेट कम रह गए रबाडा से, 28 विकेट उन्होंने लिया और वो दूसरे नंबर पर हैं। जफरा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के 25 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर, गुजरात के ही राशिद खान 21 विकेट लेकर चौथे नंबर पर हैं और कंबोज हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, 21 विकेट उनके खाते में और मलिंगा हैदराबाद के गेंदबाज 20 विकेट उनके खाते में। ये कुल पर्पल कैप के खिलाड़ियों की सूची हमने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं वैभव सूर्यवंशी की थोड़ी सी बात। आईपीएल के रोमांच रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खत्म पूरी तरह से हो गया। इस सीजन कई बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला, लेकिन ऑरेंज कैप की बाजी 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स टीम के वैभव ने सबसे ज्यादा 706 रन बनाकर हासिल कर लिया। 722 रन बनाकर गुजरात के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर। ऑरेंज कैप लीग के अंत में उसके बल्लेबाज को दी जाती है जिसने पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए। सीजन के दौरान जब मैच चलते हैं तो इसके हकदार बदलते रहते हैं। जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने किस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है उसके सिर पर यह कैप सज जाती है। वैभव ने इस सीजन कमाल की बल्लेबाजी की है। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने एलिमिनेटर में 97 और दूसरे क्वालिफायर में 96 रनों की पारी खेली। वह शतक से चूके और इसका हर किसी को मलाल रहा। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने इस सीजन 16 मैचों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत भी 48.50 का रहा। ये कुछ रिकॉर्ड, कुछ आंकड़े, पांच जो खिताब है इस बार के आईपीएल में वो वैभव सूर्यवंशी ने हासिल किए हैं। वैभव सूर्यवंशी की बात अगर आप करें तो वैभव सूर्यवंशी की आप कितनी तारीफ कर लेंगे वो शायद कम होगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी तो वैभव सूर्यवंशी ही, और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की इस बार वो काबिले तारीफ है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के कायल पूरी दुनिया के दिग्गज क्रिकेट के दिग्गज जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने ये शानदार बल्लेबाजी की है और जिस तरह से बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की है ये उन्हें अलग दर्शाता है, अलग बनाता है पूरे विश्व क्रिकेट में। उनकी एक अलग धाक कह सकते हैं कि है कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से बल्लेबाजी करते नजर आए थे। साथ ही साथ वैभव सूर्यवंशी के पास जो क्लास है उस क्लास को लेकर के तमाम दिग्गज, चाहे सुनील गावस्कर हों और फिर सचिन तेंदुलकर ने जब उनके विषय में तारीफ की तो उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। बहुत ही भावुक हो गए वैभव सूर्यवंशी कि जब सचिन तेंदुलकर ऐसा महान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के विषय में कुछ चर्चा करे तो फिर आप निश्चित रूप से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और वैभव सूर्यवंशी ने भी कहा वैभव को इस बात का जरूर मलाल रहेगा कि उनकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंची, लेकिन जो प्रदर्शन उनकी टीम ने किया, जिस तरह की उनकी टीम थी, अगर इस टीम में रियान पराग चल गए होते शुरुआत से ही, रियान पराग इस पर ऑफ कलर रहे, हालांकि रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे फॉर्म में रहे, यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी टीम को संभाला गेंदबाजी में, जफरा आर्चर ने बल्लेबाजी में भी, उसके साथ ब्रजेश, ये तमाम लोगों ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन अगर कप्तान उनके थोड़े से अगर उसी रंग और टच में रहते, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से ऑफ कलर रहे और उसका खामियाजा भुगते कि वैभव सूर्यवंशी और बाकी जफरा आर्चर इन लोगों और रविंद्र जडेजा जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे लेकिन अब राजस्थान के हो गए, तो उन्होंने भी अथक मेहनत किया और उनके मेहनत से टीम तीसरे नंबर

रही, गुजरात से जिस तरह से टीम हारी है तो वहां पर कह सकते हैं कि गुजरात की टीम एक बार लकी भी रही, लेकिन फाइनल मैच में तो उन्हें आरसीबी ने पूरी तरह से एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। इस बार की अगर आईपीएल की बात करें तो जिन खिलाड़ियों ने बहुत प्रभावित किया उसमें अविश्वसनीय पारियां जो खेली, वैभव सूर्यवंशी ने, शुभमन गिल ने, और इनके साथ साथ केएल राहुल की भी आप बात कर सकते हैं। केएल राहुल की अद्भुत गेंदबाजी की बात अगर आप करें, अद्भुत गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। नूर अहमद जो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं उन्होंने 18 रन देकर 4 विकेट लिए। जेसन होल्डर जो गुजरात टाइटंस के हैं, इनके आने से गुजरात की टीम बहुत मजबूत हो गई थी और शुरुआत में तो बहुत लड़खड़ाई थी गुजरात की टीम और लग ऐसा नहीं रहा था कि इस बार वो प्ले ऑफ में भी पहुँच पाएगी, लेकिन कहते हैं क्रिकेट अगर और मगर के खेल से परे और उसके बाद जो वापसी की है गुजरात की टीम ने, जसन होल्डर की उसमें बड़ी भूमिका रही, क्योंकि जसन होल्डर ने जिस शानदार तरीके से टीम का साथ दिया ये निश्चित रूप से अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी टीम को साथ देते हुए न केवल अपना प्रदर्शन बढ़िया किया बल्कि टीम को फाइनल तक भी पहुँचा दिया। उनका बॉलिंग विश्लेषण एक मैच में 24 रन देकर 4 महत्वपूर्ण सफलता थी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें रसिक सलाम जो आरसीबी के हैं, 24 रन देकर 4 विकेट इन्होंने भी हासिल किए, तो ये इनका भी जलवा था और जमकर इनका भी जलवा चला और इन्होंने शानदार इस तरह से गेंदबाजी की है। और अब उसके बाद अगर हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी की बात करें, उससे पहले धोनी की बात कर लेते हैं। इस साल पूरे सीजन प्रशंसक महेंद्र सिंह धोनी का इंतजार ही करते रहे मगर वह खेलने नहीं उतरे। अब चर्चा है कि उनकी फिटनेस अब उनका साथ नहीं दे रही है। धोनी ने 278 आईपीएल मुकाबले में 137.45 के स्ट्राइक रेट से कुल 5,439 रन बनाए हैं और इस तरह से उन्होंने अपने आपको कहा था कि इस बार के आईपीएल में वो खेलते दिखेंगे, लेकिन इस बार के आईपीएल में एक भी मुकाबले में वो नहीं उतरे खेलने के लिए। इसलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी खेलते दिखेंगे या फिर बिना खेले ही वो अब संन्यास का ऐलान कर देंगे। बहरहाल अब ये तो महेंद्र सिंह धोनी पर निर्भर करता है, लेकिन इस बार के सीजन आईपीएल 19 में जिस तरह से इस पूरे आईपीएल 19 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा रहा है, इसने बिहार के इस खिलाड़ी को पूरे विश्व में चर्चित कर दिया और अब सबकी निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिक गई। एशियाड के लिए जब टीम चुन रही थी चयनकर्ताओं की तो उसमें 30 खिलाड़ी में अब वैभव सूर्यवंशी का भी नाम आ गया। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने किस कदर सबको प्रभावित किया और सबसे बड़ा कारण है वैभव सूर्यवंशी ने जो आज इस तरह से ये कारनामा किया है उसमें कि वैभव सूर्यवंशी बहुत निडर होकर खेल रहे हैं, फियरलेस इनिंग खेलते हैं। और उन्होंने कहा है कि वो जब भी कोई गेंदबाज सामने गेंदबाजी कर रहा होता है तो ये नहीं देखते कि कौन गेंदबाजी कर रहा है, वो गेंद को मेरिट के हिसाब से खेलते हैं और भाई बल्ला तो चलेगा वैभव सूर्यवंशी का। और उन्होंने तो लगभग अभी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा और वो शतक वाला भी रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन कभी भी वैभव सूर्यवंशी अपने खुद के लिए खेलते नहीं दिखे, टीम के लिए खेलते दिखे। वहाँ पर अगर एक गेंद और इंतजार किया होता तो शायद रिकॉर्ड अभी वैभव सूर्यवंशी के नाम होता। लेकिन कहते हैं एक महान खिलाड़ी की यही निशानी होती है। डॉन ब्रैडमैन अपनी आखिरी पारी में शून्य के स्कोर पर आउट हो गए। सचिन तेंदुलकर कितनी बार 90s में शिकार हो गए। तो ये जब बड़ा खिलाड़ी है आपको बड़ा वही बनाता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर रुक जाते तो फिर वैभव सूर्यवंशी की हो सकता है इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला है फियरलेस, और लेकिन गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को लेकर के काफ़ी होटिंग भी हो रही है कि उन्होंने जिस तरह से उस मुकाबले में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला चल रहा था उस मुकाबले में जिस तरह से बॉडी लाइन गेंदबाजी की, उनके चेस्ट पर कई गेंदें लगी, सीने पर गेंद लगी, उसको लेकर के विश्व के तमाम दिग्गज थोड़े असहज हो रहे थे। लेकिन देखिए बड़ा खिलाड़ी तभी बड़ा होता है जब तपता है, सोना जब तपेगा तभी वो निखर कर सामने आएगा। तो इस तरह की गेंदें अगर बॉडी लाइन गेंद अभी वो खेल लेते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, वेस्टइंडीज में इस तरह की गेंदबाजी का सामना तो उन्हें करना पड़ेगा। तो इसलिए वैभव सूर्यवंशी को इस तरह की गेंदों का खेलने का भी जो अवसर मिला है तो ये उन्हें भविष्य में बहुत काम भी आएगा और उस पर बखूबी वो जवाब भी देंगे। और गुजरात के विरुद्ध तो पारी भी उन्होंने 96 रनों की खेल ही दी, तो इसलिए कहीं से भी वो उससे डरे नहीं और बिना विचलित हुए उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। इस खिलाड़ी ने बिहार का नाम रोशन किया है और बिहार के छोटे से कस्बे से आज पूरे विश्व क्रिकेट जगत में छा गया, क्योंकि आईपीएल अब पूरी तरह से पूरे विश्व में देखा जाने वाला और पूरे विश्व के तमाम अलग अलग देश के क्रिकेटर जो हैं नामचीन वो खेलते हैं। तो उन सब ने तारीफ की है वैभव सूर्यवंशी की और उससे काफ़ी प्रभावित दिखे हैं और इस बिहारी प्रतिभा को सब ने सलाम किया है कि इस खिलाड़ी में वाकई

दम है। और अब बहरहाल अब देखना होगा कि अगर भारतीय टीम में चयन होता है वैभव का, तब उनके खेलने की क्या शैली होती है, किस अंदाज से खेलते हैं, कितने सफल होते हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा। महज 15 साल की उम्र का ये खिलाड़ी अभी आईपीएल में इसने धूम मचा रखी है। अब जब भारतीय टीम में अगर चयन होता है तब किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन बॉडी लाइन गेंदबाजी का किस तरह से जवाब देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब इस पर भी जरूर उनके कोच ने ध्यान दिया होगा, अब जरूर अब इसका गुर सिखाएंगे वैभव को कि अगर इस तरह की गेंदबाजी हो तो इस पर किस तरह से अपना रुख अख्तियार करना है। बहरहाल आज के स्पोर्ट्स कॉर्नर में श्रोताओं इतना ही। अब हम आपको लेकर चलते वहां जहां लेते आपके खेल ज्ञान की परीक्षा, हमारे स्तंभ, हमारे सवाल, आपके जवाब में।

हमारे सवाल आपके जवाब में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है और तैयार बैठेंगे हमारे सप्ताह के दो प्रश्न नोट करने के लिए। तो नोट कीजिए, हमारे सप्ताह का पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न आईपीएल सीजन 19 में पर्पल कैप किस गेंदबाज के सर पर सजा। पहला प्रश्न एक बार फिर से, हाल ही में संपन्न आईपीएल सीजन 19 में पर्पल कैप किस गेंदबाज के सर सजा। और हमारा इस सप्ताह का दूसरा प्रश्न है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। इन दोनों प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा, इसके सही हल 7 दिनों के अंदर अंदर हमें हमारे पते पर लिखकर भेज दें। हमारा पता है, हमारे सवाल आपके जवाब, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड 812001। और आप हमें मेल से भी अपने सही जवाब भेज सकते। सोता हूं हमारा मेल एड्रेस है phirbhagalpur@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाब का। और अब बारी पिछले सप्ताह पूछे गए सवाल, सवाल के सही जवाब और सही जवाब भेजने श्रोताओं के नामों की। तो पिछले सोमवार को हमने आपसे पूछा था, एशिया के दूसरे तेज धावक बनने का अवसर किस भारतीय के नाम दर्ज हुआ। इसका सही जवाब है गुरिंदर वीर सिंह। हमारा दूसरा प्रश्न था, किस जर्मन फुटबॉलर ने कोच के कहने पर संन्यास से वापस आने का फैसला लिया। इसका सही जवाब है मैनुअल नुयर। इन दोनों प्रश्नों के सही सही जवाब आप श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, मायागंज दुर्गास्थान बराड़ी भागलपुर से संतोष यादव, आशीष व दीपक, बड़ी खजरपुर मस्जिद लेन भागलपुर से भाई गुल फराज आलम, बेगम समारा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली, बीकनपुर चौक भागलपुर से सलाउद्दीन परवाज एवं आयशा खातून, मुजाहिदपुर पुरपटोला भागलपुर से मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी, कादिर नूरुलराज, ईशान अकरम, एम के नाज, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, केंद्रीय आवासीय परिषद आशियाना दीघा रोड पटना से अरशान अहमद, जारिस वसी अहमद, नबा कौसर, साजली ममसी व शादाब अहमद, मोहल्ला सदरुद्दीन चक भागलपुर से मोहम्मद शहजाद हासिम, मोहम्मद हाशिमुद्दीन व इनके परिवार के सदस्य, लुत्फली लेन मोहल्ला काजी वली चक भागलपुर से फजल नसीम रोज, सुमेरा सहरीन व फैसल नसीम, सकरुला चक कवाली मैदान हुसैनाबाद भागलपुर से शमशाद खान, अली खान, वली खान, मिस्टर खान, रुस्तम खान, आजम खान, अरबाज खान, अनस खान, मनिहारी मस्जिद लेन पूरब टोला से मजहर खान, फयाज खान, अनस खान, गुड़िया, नाहिद, पाकिजा और मुस्कान। आप सभी श्रोताओं को सही जवाब भेजने के लिए खेल खिलाड़ियों से ढेर सारी बधाइयां। और अब तो हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर हमारे आपकी मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए खेल खिलाड़ी की पूरी टीम के साथ हमें यानी मिलिंद गुंजन को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका के अंतर्गत ये खूबसूरत से गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
5: I am confident that this comprehensive agreement
6: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
5: Of our shared future.
2: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चौधरी नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
7: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग।

ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दारी के माहिदे पर अमल आवरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फ़रोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिनमें तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हों। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिश्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक़ी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहिदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरखा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर

0: एलपीजी सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू

0: ये सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113 रुपये 50 पैसे का हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिले जिक्र अक्सर तब्दील के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह व बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला पीएम किसान स्कीम का आगाज़ है, जो कि मुल्क में फलाह व बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: मुख्तलिफ ज़राए के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद बताया, क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
3: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपये की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज़्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज़ कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जाँच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और ज़िला लीगल अथॉरिटीज़ के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बात कही। अर्जीगुजार का इल्ज़ाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ ताउन को फ़रोग देने की अहमियत की तौसीक की है, ताकि एक आज़ाद, खुले, पुरमन, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल काहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजराए दिफा मुजाकिरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी ताउन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के

0: हालात पर तबादला ख्याल किया। वुजरा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में तआवुन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोक भवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनाकिद हुई। गवर्नर RN रवि ने वुजरा की काउंसिल में शामिल होने वाले नए अराकीन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी समेत दीगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वुजरा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क़यादत के मुतालिक नुक्ताचीनी करने वाले अवामी बयानात देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साल 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में TMC की शिकस्त के बाद अंदरूनी खलफशार के दौरान ये फैसला सामने आया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदियां आयद करने वाला नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाज़त नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निज़ाम और बच्चों की तहफ़ की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदाम का मकसद बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाले मशमूलत, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिज़ाइन की लत लग जाने से महफूज रखना है। वो कंपनियां जो इस जाब्ते पर अमलावरी नहीं करेंगी उन्हें 1 करोड़ रिंगिट तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की रसाई पर पाबंदियों को मुतारिफ कराया है, जबकि ब्राज़ील ने वालिदैन की सख्त तरीन निगहदाश्त और उम्र की तस्दीक से मुतालिक इकदाम पर अमल शुरू कर दिया है। भारत की सनती पैदावार में अप्रैल 2025 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 4.9% की तरक्की हुई है। ये तरक्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्दा कारकर्दगी की वजह से हुई। आदाद शुमार और प्रोग्राम पर अमलावरी की वजारत ने बताया कि यह आदाद शुमार सनती पैदावार के नजरसानी शुदा इशारे IIP सीरीज़ पर मबनी है, जिसका बुनियादी साल 2022-23 है। इसमें कहा गया है कि इस माह के दौरान 6.2% तरक्की रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज़ आंधी की सूरत हाल के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने वस्ती कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाएँ चलने की भी पेशगोई की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मोबाइल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फ़रोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज़ आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार

0: जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331048128, 2371711, 2371710 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते आए हैं कि लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको भी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज लीची आम इनका सेवन करना है, और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागडे हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीपाद डॉक्टर बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है। जो बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है चिड़चिड़ापन है बेचैनी लगती है तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए खासकर ना हाई बीपी वालों ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उन को हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है COPD अस्थमा ब्लड प्रेशर की बीमारी शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
4: देखिए ये हीट वेव जो

0: लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल मई जून एंड थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेट जो 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है। तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो, एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे
0: नहीं,
1: कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
0: हाँ कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो होता है, जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल एरिया जो 40 डिग्री 37 डिग्री से ज़्यादा होना था वो कोस्टल एरिया है,
1: और प्लेन्स के लिए?
0: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
2: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
3: कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
3: देखिए लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं, माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
3: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
3: जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
3: बिल्कुल
1: क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है?
3: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, एक तो हल्के कपड़े

0: गीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्जर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्जर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी छाछ बेल का शरबत ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका क्या मतलब क्या होता है?
3: देखिए बताता हूँ क्या होता है। तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे,
1: और वो भी खतरनाक
3: होता है।
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
4: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी भट्टी से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को शिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं कृपा करके?
0: हाँ जी देखिए, कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीज़ें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस

0: 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है, तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी एक चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी अगर कुछ वैसे हो जाता है, तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके जी।
1: देखिए जब भी आप बाहर निकलें, कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिजम्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं खास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें, और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
2: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
1: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
2: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की, उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
1: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको

0: पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा,
2: नहीं पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है, तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल, और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: आईएमडी जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
3: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दूसरा हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहा है, आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो

0: इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहाँ से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में।
0: देखिए, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे बचपन बजे नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
2: जी, मैं रवि जवालिया जड़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
2: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेटन मशीन पे गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोताओं से भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
3: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
3: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता, बच्चे को लू लग गई है
3: जी, बिल्कुल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है, और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले, और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
3: बिल्कुल
1: जो बहुत, का बच्चा
3: बिल्कुल
1: है,
3: बिल्कुल
1: उसके लिए
3: सुस्तीपन दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा है बिल्कुल, अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है, और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है, और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स में।
0: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन सेशन से भी लोग जाते रहते हैं तो, बट आजकल क्या होता है क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पकड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका उसका प्लेन में भी रहेगा, जब जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
0: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनिसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्स और FM 100.1 मेगा हर्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पार्टी। इनका शहनाई वादन आइए सुनते हैं। राग है मारो विहाग।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। कलाकार थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां एवं पार्टी। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम पसंद आपकी। आरंभ में सुनिए फिल्म दीवाना का ये गीत। कुमार सानू की आवाज़ में गीत लिखा है समीर ने और संगीत रचना है नदीम श्रवण का और पसंद किया है आप सबों ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, निशा, दिशा और लव श्रीवास्तव। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और किश श्रीवास्तव। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। और पिपरा मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर

अगली फरमाइश लिख भेजी है इंदिरा बिहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वली अल्लाह नूरजहां। राजनाद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिवा तिवारी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, बिट्टा बजाज और साहिल। और लालूचक भागलपुर से विष्णु कुमार चौधरी, गायत्री देवी, आरती कुमारी, रेखा, पूनम, रीता देवी, अंजलि और इनके परिवार के सभी सदस्य। एवं पटना बिहार लेन से बेबी प्रियंका, छोटी मुस्कान, ममता और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने पसंद किया है फिल्म हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत रचना शंकर जय किशन का।

अगली फरमाइश लिख भेजी है फिल्म दबंग के लिए, आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गीत जलीस शेरवानी के हैं और संगीत रचना साजिद वाजिद का, और पसंद किया है आप सबों ने। अनिरुद्ध चौक चुन्नी मधेपुर से भाई प्रेमचंद्र ठाकुर, रानी मीना ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, संजू मिश्र, सुभाष मिश्र, भवानी, लवकुश, अरुण झा और राजू खान। मुजाहिदपुर पूरब टोला से राजू खान, आलिया और आदिया। बड़ी खंजरपुर भागलपुर बिहार से भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा और दोस्त जपन जमालुद्दीन नेपाली। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, वली उल्लाह डोम। और मस्कंद चंपा नगर से अशोक कुमार, शेखर प्रसाद, सुनील ठाकुर, गणेश दास और उर्मिला देवी। आप सबकी पसंद पे सुनिए ये गीत।

गंगा विहार रानी तलाव से नंद किशोर मंडल, मीरा देवी, नीलम, मनोज, अमित, बबली, स्वीटी, सुरुचि, रॉली, पायल, अनवी, आशी और इशुबाबू। बड़ी गोविंदपुर मुंगेर से मुकेश कुमार, बबलू और इनके परिवार के सभी सदस्य। सुल्तानगंज सीतारामपुर से प्रमोद पासवान, सुस्मिता, सागर, दीपा, करीना और सूरज। राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिधि गुप्ता। ऐसबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुरी गुप्ता। और राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन। आप सब ने पसंद किया है फुल फिल्म जादू का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और धुन बनाई है नौशाद ने।

अगली फरमाइश लिख भेजी है धोरैया गंगदौरी से रामविलास रविकांत नीरज अमन मारुति सावित्री देवी कावित्री तनुजा और सानदेव हरि ने। अकबर नगर से अशोक कुमार गुप्ता विनोद कुमार गुप्ता सोनू कुमार गुप्ता रिशु कुमार और अंशु कुमार। सकरुल्ला चक कवाली मैदान भागलपुर से शमसाद खान वही खान अली खान मिस्टर खान रुस्तम खान आजम खान अरवास खान गयास खान और अल्तमस खान। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल रीता देवी शिल्पा रानी और आकाश कुमार। गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल आशीष मंडल कुंदन मंडल करीना कुमारी पूजा कुमारी आरती कुमारी और सुनीता देवी। आप सबने पसंद किया है फिल्म बेवफा का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत समीर के हैं और संगीत रचना नदीम श्रवण का।

सुन रहे थे कार्यक्रम पसंद आपकी, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की

0: पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to